सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोल शशि के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुम्हारा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुम्हारा भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं, कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कन्ने। बहुत सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हें बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

है तो सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत तो सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

कुंजन धर्मशाला ते गणेश होता तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देने माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो कुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुंगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट

0: ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले
1: यह जनगणना का साल, यह जनगणना का
0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
2: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
6: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
5: मेरी जॉब लग गई है।
6: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
5: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
6: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
5: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से करेंगे बातचीत, सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे से फिल्मी गीत और श्रोताओं धर्मशाला और आसपास की स्थानीय जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। और बता दें आपको कि इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शशि। जी हाँ, शशि जो दिन में पहाड़ी प्रोग्राम आपको सुनाती है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी करती है और बहुत ही प्यारे प्यारे से पहाड़ी जो लोकगीत हैं हमें वो सुनवाती हैं। और श्रोता और रेडियो गुंजन की ये खास पहल कहें हम कि आप इस समय हमें सुन पा रहे हैं और सुनने के साथ साथ रेडियो गुंजन का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर इस वक्त आप हम सभी आरजेस जो भी हैं हमारे उन सबको देख भी पाते हैं जब भी हम किसी कार्यक्रम में लाइव आते हैं। और उत्सुकता रहती है श्रोताओं, आजकल तो मुझे नहीं पता लेकिन जिस दौर में हम रेडियो सुनते थे तो हमारी कल्पनाएं जो है वो उड़ान भरती थी और आवाज़ सुनकर के हम अंदाज़ा लगाते थे कि ये उद्घोषक ऐसा दिखता होगा या ऐसी दिखती होगी। तो चलिए अब ये जो कल्पनाएं, वैसे तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं हमारे सारे ही जितने भी अनाउंसर्स हैं और आरजेस हैं उनको, लेकिन थोड़ा बहुत जिनके मन में था डाउट वो भी क्लियर हो गया है अब फेसबुक लाइव की वजह से। तो आपको ये हमारी पहल कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आप हम लोगों को और देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप सिर्फ हमें सुने ही। तो श्रोताओं बातें भी होंगी और आपके साथ जानकारियां भी साझा करेंगे और मनोरंजन। अब लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के सबसे पहले प्यारे से गीत की ओर। धुरंधर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

1491.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 66%। और दिन भर के मौसम की बात करें श्रोताओं, तो हल्के फुल्के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। और जनरली मौसम की बात करें श्रोताओं, तो हम जब भी थोड़ी बहुत गर्मी में हमें लगता है कि गर्मी हो गई, उमस हो गई, तो इतना अच्छा यहाँ का हम कह सकते हैं वातावरण है या इतनी अच्छी कुदरत है कि बारिश की फुहारें हो जाती हैं और ठंडक पड़ जाती है। तो कुदरत हम पे मेहरबान है और हम इतनी अच्छी जगह रह रहे हैं, इसके लिए हमें कुदरत का शुक्रगुजार होना जो है वो बनता है। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और बातों बातों में कार्यक्रम में अब समय आपके साथ आज का विचार साझा करने का भी हो रहा है। तो आज का विचार सिर्फ सिंपल सा, छोटा सा, लेकिन बहुत गहरा है कि समय की कद्र कीजिए। जी हाँ श्रोताओं, समय की कद्र कीजिए। और कहते हैं जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। हर चीज़ का मजा जो है वो समय रहते ही होता है। और हर चीज़ को हम इंजॉय भी तभी कर पाते हैं जब उस चीज़ को करने की सही, हम कह सकते हैं, उम्र होती है या सही समय होता है। और वक्त गुजर जाने के बाद कोई भी चीज़ है वो अगर मिल भी जाती है तो वो आनंद नहीं आता। इसलिए वक्त की कद्र कीजिए और वक्त हमारी और आप सबकी कद्र करेगा और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है दोस्तों, जब हम समय की कद्र करते हैं। और अब हम समय की कद्र करते हुए आपको कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आपको बता दें आज है श्रोताओं 18 जून का दिन और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है वो विश्व भर में मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, पिकनिक जो आज से कुछ समय पहले बच्चों में या यूं कहें कि बड़ों में भी काफ़ी प्रचलित एक त्यौहार की तरह जो है वो मनाया जाता था, लेकिन आजकल पिकनिक का भी रंग रूप बदला है थोड़ा सा और लोगों ने पिकनिक कम कर दी है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो पिकनिक मनाते हैं अभी भी। और ये पिकनिक क्यों मनाई जाती है, किस दिन शुरुआत हुई थी, इस सब के बारे में आपके साथ कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: सलमान खान की कॉमेडी

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम में श्रोताओं अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात हुआ, कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार करना है। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इस योजना के माध्यम से देश भर में पहले ही 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। 99,446 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रुपए से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस अवसर पर शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
2: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधान और उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान और उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, तो दोनों मिला के हमारे 1692।
1: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरानखड क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब युवा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की लगभग 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और नशे से जुड़े मामलों में अभी तक 123 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 सरकारी कर्मचारियों और 21 पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी खेलो इंडिया चिट्टा मुक्त अभियान के माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहारा योजना के एक लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वह व्यक्ति जीवित है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई सहारा और हिमकेयर योजना के बजट में कटौती करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के नाको में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नाको में कला मंच का उद्घाटन भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हागरंग घाटी में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र का रुख करें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया और देनदारियां नहीं दी गई। उन्होंने कर्मचारियों से अपने अधिकारियों के प्रति एकजुट होने का आह्वान भी किया। राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। दूध के बेहतर दाम मिलने से कांगड़ा जिला के ढगवार प्लांट में प्रतिदिन 24,000 लीटर दुग्ध संग्रह हो रहा है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में किसानों और बेरोजगारों के लिए दूध उत्पादन मजबूत व्यवसाय बन रहा है।
3: पशुपालन जो पहले केवल आजीविका का साधन माना जाता था, अब किसानों के लिए मजबूत व्यवसाय बनता जा रहा है। सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में नई श्वेत क्रांति आकार लेने लगी है। 3 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है और लोगों का डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। दुग्ध क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कांगड़ा जिले के डगवार में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से एक पूर्णता स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा कांगड़ा दुग्ध संघ के 20,000 किलोलीटर क्षमता के 2 चिलिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के

0: ये कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व प्रदेश के कई भागों में वर्षा होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज बारिश, अंधड़, बिजली गिरने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का अनुमान लगाया है। देश के विभिन्न राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक भारी तादाद में प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला व मनाली सहित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी खुश हैं। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले के खजियार व डलहौजी सहित अन्य पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। हालांकि लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
2: चंबा जिला की हसीन वादियों का दीदार करने हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं देने का जहां दावा करता है, वहीं कई स्थानों पर स्थिति इसके विपरीत है। जिला के पर्यटन स्थल खजियार और डलहौजी में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पर्यटकों ने सरकार को पर्यटन सीजन के दृष्टिगत पहले से पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने की सलाह दी है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और इसके अलावा सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू जिला उपायुक्त व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पर रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग पर भी पाबंदी। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, जल विद्युत परियोजनाओं में रियलिटी बढ़ाए केंद्र। हाईकोर्ट ने हटाई सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए हैं। दैनिक जागरण की एक खबर है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना से बाहर होंगी कई महिलाएं। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रदेश में फिर बरसे बादल, एक सप्ताह में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला
3: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के बाद कार्यक्रम में अब समय है अंतराल का। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आज है 18 जून और हर साल आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस इस बार आज ही के दिन यानी गुरुवार के दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी बिजी दिनचर्या से समय निकालकर प्रकृति के बीच, नेचर के बीच अपनों के साथ आनंदमय पल बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है आज का ये दिन। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम कार्यक्रम में आगे जानेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। और ये गीत है हम है राही प्यार की फिल्म से। और अगर आपने ये फिल्म देखी होगी श्रोताओं, तो इस फिल्म का दृश्य कुछ इस तरह से है कि सब लोग मिलजुल करके जा रहे हैं पिकनिक मनाने, हंसते गाते खिलखिलाते हुए। तो एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक हम है राही प्यार की फिल्म से।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के बारे में। जी हां श्रोताओं, आज है 18 जून और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो है आज ही का दिन नहीं बल्कि पिकनिक जब भी हम मनाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य रहता है मौज मस्ती और हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करना। और जब भी हम पिकनिक पे जाते हैं अपने अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो ये जो गैदरिंग होती है इसमें सब अपने होते हैं। गिले शिकवे दूर मिटा कर के हम पिकनिक के लिए जाते हैं खुले आसमान के नीचे और तनाव से मुक्ति ये चीज़ हो जो है वो हमें दिलाती है। खुले आसमान और हरियाली के बीच बैठ कर के समय बिताना हमें मानसिक शांति जो है वो प्रदान करता है। रिश्तों में मजबूती भी आती है श्रोताओं इससे। परिवार और दोस्तों का एक साथ पिकनिक मनाने जाना जिसमें बच्चे भी होते हैं और कई बार हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी ले जा सकते हैं, और जब हम सब लोग मिलजुल करके जाते हैं एक साथ प्रकृति में समय बिताते हैं तो उससे जो है वो हमारे आपसी रिश्ते हैं वो भी मजबूत होते हैं और आपस का जो प्रेम भाव है वो भी बढ़ता है। इसलिए जब भी समय मिले, अच्छा मौसम हो, छुट्टी हो, तो घर परिवार और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ पिकनिक पे जरूर जाएं और अच्छा समय बिताएं, तनाव से भी मुक्त हों और अपने रिश्तों को और अधिक मधुर जरूर बनाएं। श्रोताओं, पिकनिक से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें आपके साथ करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो आइए चलते हैं मनोरंजन की और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओ आइए अब चलते हैं और पलटते हैं इतिहास के पन्ने, जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में।

तो आज के दिन यानी 18 जून 1858 के प्रथम स्वतंत्रता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के निकट अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। अठारह जून 1941 स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक समाचार पत्र भी शुरू किया। अठारह जून 1956 हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार देने वाला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया।

लड़ा गया ऐतिहासिक वाटरलू का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी सम्राट ने नेपोलियन बोनापार्ट को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश मित्र सेना ने करारी शिकस्त दी। June 18, 1812 अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे इतिहास में 1812 का युद्ध वार ऑफ 1812 कहा जाता है।

2023 अंटार्कटिका महासागर में टाइटन पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। और श्रोताओं, इसके साथ ही आज ही के दिन 18 जून 1942 महान गणितज्ञ शकुंतला देवी का जन्म हुआ था, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। आज ही के दिन 18 जून 1950 भारतीय राजनेता और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओ, ये थी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन घटी थी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आप चलते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है कलंक फिल्म से।

0: सत्य ने इस घर को संभाला था, मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी इस घर में।
1: मुझे नहीं लगता मैं सत्य की जगह ले पाऊंगी।
0: आपके पति कई दिनों
1: जा नहीं पाऊंगी।

0: जिस दिन आपके पिताजी परेशान हो रहे थे।
1: 10 साल आपके लिए बहुत मुश्किल।
2: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं, फिर से समय हो रहा है अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, इस अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओ, रेडियो गुंजन को इस समय आप न सिर्फ धर्मशाला बल्कि देश दुनिया के किसी भी कोने में देख पा रहे हैं और सुनते तो आप पहले से ही हैं। और बता दें आपको कि आप देखने और सुनने के साथ साथ जब भी आपका मन करे रेडियो गुंजन के साथ जुड़ने का, आप गूगल पे जा करके, बहुत ही सिंपल सा काम है, 91.2 MHz FM रेडियो गुंजन टाइप करना है और उसको टाइप करते ही आपको मिलेगा आपका अपना, अपने प्रदेश का, अपने जगह से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ रेडियो चैनल रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आप अपने लोगों के साथ, अपने रेडियो चैनल के साथ देश दुनिया के किसी भी कोने में हो जुड़ सकते हैं। श्रोताओ, आज है 18 जून और आज के दिन हम बात कर रहे हैं आज के खास दिन के बारे में, यानी आज है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। और पिकनिक का जो मज़ा होता था वो बचपन में जितना

हम समय निकाल करके अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो पिकनिक पे जा सकते हैं दोस्तों, और प्रकृति के बीच में बहुत अच्छा ही समय जो है वो बिता सकते हैं। प्रकृति की गोद में अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा सा समय बिता करके अपने दिल की बातें कर सकते हैं और पिकनिक के दिन को यादगार बना सकते हैं। श्रोताओं, अगर समय है आपके पास आज, कल या आने वाले जब भी दिनों में, जब भी फुर्सत होती है तो जरूर पिकनिक पे जाइए। श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब चलते हैं फिर से गीत संगीत की ओर। जी हाँ श्रोताओं, सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब चलते हैं जानकारियों की और। सतत शहरी विकास तथा आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए धर्मशाला में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 नए इलेक्ट्रॉनिक सिटी ई बस मार्गों को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बताया कि फव्वारा चौक के पुनर्विकास का उद्देश्य कोतवाली बाजार में यातायात को सुचारू बनाना, क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना तथा इसे एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करना है। परियोजना के तहत सड़क के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाने के लिए फव्वारे और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का पुनर्स्थापन किया गया है, जबकि रामलीला मंच और फव्वारा क्षेत्र को एकीकृत सार्वजनिक प्लाजा के रूप में विकसित कर भूमि के बेहतर उपयोग और यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि नव विकसित फव्वारा चौक में पारंपरिक स्थानीय शैली की भित्ति चित्रकारी, वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पर्याप्त बैठने की सुविधा तथा आकर्षक केंद्रीय फव्वारा स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की यह परियोजना राज्य सरकार के विकास केंद्रित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है तथा इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। श्रोताओं, ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए हमारे साथ यूं ही 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोतो, हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति के विनोद और साथियों की आवाज़ों में। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। कांगड़ा जिला के धर्मगिरी पठियार में महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक निर्भीक योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता भी थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि ये युद्ध आज भी साहस, बलिदान तथा स्वतंत्रता एवं सम्मान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाकर राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, जाने तू या जाने ना फिल्म से।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, रेडियो गुंजन को सुनने के साथ साथ फेसबुक पेज पर इस समय आप देख भी पा रहे हैं। और श्रोताओ, रेडियो की बहुत ही अच्छी और ख़ास बात ये होती है कि रेडियो को सुनते समय हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे करते भी रहते हैं और साथ ही साथ रेडियो भी सुनते रहते हैं। और ख़ासकर हमारी जो महिलाएं हैं, घर में गृहिणियां हैं या जो भी कामकाजी लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, वो रेडियो सेट्स ऑन करके रेडियो में आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनको भी सुनते रहते हैं, गीत संगीत का भी मज़ा लेते हैं और साथ ही साथ अपने काम को भी जारी रखते हैं। तो रेडियो की ये खास बात जो है वो रेडियो को बाकी मनोरंजन के साधनों से अलग करती है, जो कि बहुत ही अच्छी और ख़ास बात है। और श्रोताओं, बता दें आपको कि इस वक्त रेडियो गुंजन को आप सुन पा रहे हैं, सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं। और ना सिर्फ धर्मशाला में बल्कि धर्मशाला के बाहर भी आप लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन के माध्यम से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। और रेडियो खासकर हम तब भी सुनते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं। तो आप सभी से जो ट्रैवल कर रहे हैं इस समय या ट्रैवल करते समय रेडियो सुनते हैं, उनसे छोटा सा अनुरोध ये भी है कि रेडियो आप ज़रूर सुने और उसकी जो आवाज़ है वो उतनी ही रखें जो आपके कानों को सूदिंग लगे, मिठास रहे। ना कि कई बार हम इतना कुछ श्रोता या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फुल वॉल्यूम में गाने भी सुन रहे होते हैं। नॉट, ये सिर्फ रेडियो के लिए नहीं है, अपनी पसंद के कुछ और भी गाने जब हम सुन रहे होते हैं तो फुल वॉल्यूम, और आने जाने वाले लोगों को भी हम ये दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी गाड़ी है और इतनी ज़ोर शोर से उसमें गाने चल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ख़त्म करना चाहिए इस तरह का कल्चर। सूदिंग से गाने, सूदिंग सी आवाज़ जो कानों को मिठास भी दे और रूह तक गाने पहुँचे, ऐसे आप संगीत का जो है वो आनंद ज़रूर लीजिए और यातायात के नियमों का ज़रूर ज़रूर पालन कीजिए, चाहे आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं। तो श्रोताओं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर बनाती हैं। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम चलते हैं फिर से मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है श्रोताओं रॉक स्टार फिल्म से और एंजॉय कीजिए ये रॉक स्टार फिल्म का प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में फिर से समय हो रहा है अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोतो, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओ, कार्यक्रम में अंतराल के बाद अब आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के

0: प्रिय पिकनिक दिवस और पिकनिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। रूप थोड़ा सा बदला है पिकनिक का, लेकिन पिकनिक पे जब भी हम जाते हैं तो मौज मस्ती, हंसी खुशी यही हमारे साथ पूरे दिन भर रहता है, जितना भी समय हम पिकनिक में मनाते हैं। किस तरह से मना सकते हैं पिकनिक दोस्तों? पार्क या घर से बाहर किसी खुले मैदान में जाएं, प्रकृति की गोद में, जो भी जगह आपको अच्छी लगती हो। या कई बार हम लोगों ने पहले से निर्धारित किया होता है कि इस जगह हम जाएंगे, लेकिन जगह घर से इतनी दूर ना हो कि आने जाने में ही समय जो है वो हमारा बर्बाद हो जाए। इतनी दूर हम स्थान निर्धारित करें जहाँ पे आसानी से जाया जा सके, जहाँ पे प्रकृति के नज़ारे भी हों और सब लोग मिल बैठ करके अच्छा समय खुशी खुशी वहाँ पे बिताएं, और घर से बना हुआ अपनी पसंद का खाना ज़रूर लेकर के जाएं। इसके साथ अपने साथ बच्चों के लिए स्नैक्स और फल वगैरह भी ले जाएं, और आउटडोर गेम्स का इस दिन हम मज़ा ले सकते हैं। बच्चे घर में रहते हैं तो ज़्यादातर फ़ोन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे वो चिपके रहते हैं। ये वक्त ऐसा है जब उन्हें प्रकृति के साथ रूबरू करवाया जा सकता है और आउटडोर गेम्स में उन्हें इन्वॉल्व करके उनके समय को, उनके दिन को अच्छी तरह से हम व्यतीत कर सकते हैं। और गैजेट से आज के दिन पूरी पूरी दूरी रखनी होगी, तभी बच्चे असल में उस माहौल को, उस मौज मस्ती को एंजॉय कर पाएंगे और आपसी बातचीत और हंसी मजाक का भी अच्छे से आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी मेन बातें जो हम पिकनिक पे जाते समय या पिकनिक मनाते समय कर सकते हैं। बाकी हर किसी का पिकनिक मनाने का, पिकनिक पे जाने का अपना अपना तरीका होता है। अपनी पसंद की जगह चुनें, अपने दोस्त, रिश्तेदार, जो भी आप पिकनिक पे ले जाना चाहते हैं उनको ले जाएं, और अपनी पसंद का खाना और खाने पीने का सामान ले जाएं, और इस दिन को यादगार और खुशनुमा बनाए रखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां जाकर के आप नई यादें बना करके आएं जिंदगी भर के लिए। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब फिर से वक्त हो रहा है श्रोताओं मनोरंजन की और आपका रुख करवाने का, तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है दिल किल फिल्म से, इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।
1: एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

1491.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज के दिन हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के बारे में। आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और इसके बारे में हमने आपसे बातचीत की। और पिकनिक एक ऐसी, हम कह सकते हैं, उत्सव है, एक ऐसा छोटा सा त्यौहार है जिसे हम बिना किसी कैलेंडर के देखे जब हमारा मन करता है तब मना सकते हैं। बस हमारे पास फुर्सत के पल होने चाहिए और अपने अपनों का साथ, और कई बार हमारे कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार हमसे थोड़ा सा रूठे होते हैं तो उनको भी पिकनिक के बहाने हम एक साथ बुला करके खुले आकाश के नीचे इकट्ठे होकर के बैठ करके हम जो है वो अपने जो मन मुटाव है उनको भी मिटा सकते हैं और अच्छा समय, यादगार समय जो है अपने अपनों के साथ, यार दोस्तों के साथ जो है वो बिता सकते हैं। साथ ही साथ घर का बना हुआ खाना हो तो क्या ही बात है। तो दोस्तों, पिकनिक पे ज़रूर जाना चाहिए हमें लगता है, चाहे साल में एक ही बार जाएं लेकिन अच्छी जगह चुनें और अपने उन सब दोस्तों, सहेलियों को और रिश्तेदारों को, बच्चों को लेकर के जाएं जो इस तरह की गतिविधियों को एंजॉय करते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे श्रोताओं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से कार्यक्रम का अगला प्यारा सा और अंतिम गीत। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का अंतिम गीत, ये कहते हुए थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारा लाइफ का सफ़र बस यहीं तक, लेकिन घबराइए मत श्रोताओं, इस लाइव के बाद आप सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत कार्यक्रम में। और अगले लाइव के लिए शशि यहाँ तैयार बैठी हुई है, उसके बाद शाम 4 बजे सचिन के साथ भी आप सुनते हैं इंदी अपनी गप्पा, और शाम 6 बजे फिर से लाइव में जुड़ेंगे हमारे केंद्र के दूसरे आरजे साथी। तो यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।

0: कोई भी हारेगा देश जीतेगा।
1: सुनो आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
2: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
1: मेरी जॉब लग गई है।
2: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
1: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
2: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
1: हाँ मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर है।

0: लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
4: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
3: मेरी जॉब लग गई है।
4: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
3: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
4: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
3: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गेन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं अर्णव बंसल ऑर्गन इंडिया से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे एक कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। आज हमारे शो में एक बहुत खास मेहमान है, एक ऐसी बेटी जिसने 27 साल की उम्र में अपने गुर्दे को दान करके अपने पिता को एक नया जीवन दिया। स्वारिका सरपेन की जन्मभूमि तो कोलकाता है मगर कर्मभूमि बैंगलोर है। ये एक मैनेजर है सेंट गोबिन में। स्वारिका, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू अर्णव, आपका धन्यवाद मुझे इस शो में स्वागत करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी।
2: तो स्वारिका जी, अब हम आपकी कहानी की ओर चलते हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या मुश्किल आन पड़ी कि आपको अपना गुर्दा दान देना पड़ा अपने पिताजी को, और ऐसी आपके पिताजी को क्या असुविधा थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर में मैंने अपनी वन किडनी डोनेट की है अपने फादर को। एंड ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लाइक जब ये डिसीजन हमको फर्स्ट टाइम हमने लेना पड़ा था एज अ फैमिली, वॉज मार्च 2021 जब हमें फर्स्ट टाइम पता चला था कि ऐसा सिचुएशन है कि मेरे पापा को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो मेरे पापा डायबिटिक हैं बहुत सालों से, एंड बाकी लाइक बीपी की परेशानी भी रही है उनसे काफ़ी रही है उनको काफ़ी सालों से। तो उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, बट वो क्रॉनिक किडनी डिजीज काफ़ी मैनेज थी, एकदम मैनेज वे में वो चल रही थी, कोई इशू ऐसा मेजर नहीं हुआ था। बट उनको 2020 में कोविड हुआ था, 2020 फर्स्ट वेव जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था, तो उस समय जुलाई में उन्हें कोविड हुआ था। एंड वो बहुत ही हमारे लिए डिफिकल्ट समय था, हमें उस समय हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे थे एंड उस समय टेस्ट भी नहीं होते थे आई रिमेम्बर। एनीवे हमें हॉस्पिटल मिले एंड बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से उस समय वो बाहर आए थे। डॉक्टर्स ने उस समय हमें लगभग बोल दिया था कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है जब वो आईसीयू में एडमिट हुए थे। तो वैसा सिचुएशन था, वो जुलाई 2020 की मैं बात कर रही हूँ। बट उस

0: बाद भी मैनेज था, लाइक उस समय उनका जो वैल्यू था किडनी से रिलेटेड वो अचानक से बहुत ज्यादा शूट अप हो गई थी, बट फिर भी वो इतने मंथ मैनेज था, लाइक 6-7 मंथ, लाइक कोविड जब वो रिकवर कर गए कोविड से तो अल्टीमेटली वो वैल्यूज भी काफी नॉर्मल हो गई थी, बट फेब्रुअरी 2021 से अचानक से उनकी जो रिपोर्ट थे बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल हो गए, लाइक देवर इंडिकेटिंग कि लेवल्स आर वेरी वेरी अप. तो हम लोग भी बहुत परेशान थे, वी कंसल्टेड अवर फैमिली डॉक्टर एज आई वी आर फ्रॉम कैलकटा, वी विजिटेड देयर, हम वहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर जो बहुत साल से जिस नेफ्रोलॉजिस्ट को वो कंसल्ट कर रहे थे उनको दिखाया, तो ही सेड कि अभी टाइम आ गया है कि आप ट्रांसप्लांट कंसिडर करिए. उस समय मैं उनके साथ नहीं थी कैलकटा में, बिकॉज मैं हैदराबाद में रह रही थी उस समय, एंड इवन लाइक वी हैड जस्ट गॉन कैलकटा टू कंसल्ट द डॉक्टर. तो जब वो वापस आई कैलकटा से टू हैदराबाद, माय फैमिली व्हेन दे केम बैक, तो कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे ये न्यूज़ बताई, तो इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी. एंड उसके बाद हमने बहुत सारे टॉप डॉक्टर्स ऑफ हैदराबाद को कंसल्ट किया, बिकॉज हम ये मानना नहीं चाहते थे कि जो कैलकटा के डॉक्टर ने हमें बताया है वही कोर्स ऑफ एक्शन है. हमें और ओपिनियंस चाहिए थे डॉक्टर से कि कुछ और भी तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का. तो ये सिचुएशन था जो लाइक हमें डिसीजन को लीड किया, बिकॉज सारे डॉक्टर्स ने हमें यही बोला, सारी टॉप डॉक्टर्स से भी जब हमने कंसल्ट किया सबका मोर ऑर लेस सेम एक ही मानना था कि ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट ऑप्शन है इस समय.
1: अच्छा, तो जब डॉक्टरों ने बोला कि आप लोगों को प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों ने मृत डोनर ढूंढने की कोशिश की या फिर अपने परिवार में ही डोनर ढूंढना शुरू कर दिया?
0: जब पहली बार हमें पता चला, एंड स्पेशली जब मुझे पता चला, अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर मेरी फैमिली को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है. बट जो भी हमारा नॉलेज था, और दो तीन डॉक्टर से ऑलरेडी बात हो गई थी, तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि कैडेवर डोनर जो होता है कि डेड पर्सन से ऑर्गन डोनेशन लेना वो क्या प्रोसेस होता है, एंड लाइव ऑर्गन डोनेशन क्या प्रोसेस है. तो तब तक हमें दो तीन डॉक्टर्स से जब हम कंसल्ट कर चुके थे, तो हमें उन्होंने ही डॉक्टर्स ने ही आइडिया दिया था कि कैसा प्रोसेस होता है. तो हमने एक बार उसके बारे में बात की थी, बट ये कैडेवर डोनेशन का कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब एक पर्सन को ऑर्गन मिलेगा. वेटिंग टाइम कुछ इयर्स तक लास्ट कर सकती है, एंड हमें हमारी फैमिली में किसी को भी वो रिस्क के बारे में हमें नहीं सोचना था कि इतने साल वेट करे. एंड वैसा ही सिचुएशन होता है एक्चुअली जब किसी को ऑर्गन रिसीव करना होता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस तरह से किसी को ऑर्गन मिल पाए. बट इसमें कितना टाइम लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है. तो हम लोग ने लाइव ऑर्गन डोनेशन को ही देखा, विद इन फैमिली ही हमने सोचा कि जितना जल्दी हो पाए विद इन फैमिली हम देखते हैं कि कौन सूटेबल मैच हो सकता है, एंड कैसे इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल सकता है.
1: साथियों, अब एक छोटे ब्रेक लेकर वापस आते हैं, और वापस आकर हम चर्चा जारी रखेंगे स्वरेखा जी के साथ और इनकी कहानी को पूरा जानेंगे. धन्यवाद.
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव.
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है. हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी. मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी. ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ. अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद. हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: साथी है।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
2: नमस्कार, वापसी पर स्वागत है। हम स्वारिका जी से चर्चा पे हैं आज, जो हमें अपने गुर्दे दान की कहानी बता रही हैं। इन्हें अपना गुर्दा देके अपने पिताजी को एक नया जीवन दिया है। इन्हें गुर्दा दिए हुए एक साल हो गया और ये विश्व प्रत्यारोपण खेलों में भाग लेने जा रही हैं। तो अब हम चर्चा को आगे लेकर जाएं। तो आपके परिवार में आपके सिवाय कोई और भी था जो आपके पिताजी को गुर्दा दे सकता था?
3: तो मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी एक एल्डर सिस्टर है और मेरी मॉम है। तो हम तीनों ही ऑप्शन थे जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे। तो मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप मेरे पापा से अलग था, तो बिकॉज मैच था ही नहीं वहाँ पर, देयर वाज नो क्वेश्चन कि वो डोनेट कर सकती है डायरेक्टली। ऑल्दो वो बोल रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी जी चुकी है, तुम लोग बच्चे हो अभी, तुम लोग का एज अभी बहुत कम है, मैं चाहती हूँ करना, बट क्योंकि वो मैच था ही नहीं तो वो हमारे हाथ में नहीं था, वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। इन द केस ऑफ मैं और मेरी एल्डर सिस्टर, हमारा दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, सेम एज इन मैचिंग था फ्रॉम विद माय डैड। मेरा ब्लड ग्रुप इज सेम एज माय डैड एंड मेरी एल्डर सिस्टर का ब्लड ग्रुप इज ओ, सो शी कैन डोनेट टू एनी अदर ब्लड। तो हम दोनों एक्चुअली टेस्टिंग रिगरस जो भी प्रोसेस है, सारा प्रोटोकॉल सब कुछ फॉलो करके हम दोनों का हेल्थ का टिश्यू मैच और जो भी सारी प्रोसेसेस होती हैं टू बी फिट की मैच करने के लिए, जो भी प्रोसेस होती है डोनर और रिसिपिएंट के, वो लास्ट तक हम दोनों बहनों का हुआ था, बिकॉज हम दोनों तैयार थे डोनेट करने के लिए। एंड सिंस मैं छोटी बहन हूँ, तो इवन मेरी बड़ी बहन वॉज वेरी पर्टिकुलर की नहीं, एंड उन्हें डोनेट करना चाहिए एंड नॉट मी। एंड सिंस मेरी शादी भी नहीं हुई थी, टू माई फैमिली, मेरी मम्मी एंड माई सिस्टर, मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में, वो सिचुएशन था ओवरऑल।
2: तो परिवार के सिवाय बाहर समाज भी बहुत बातें करता है, दोस्त लोग बहुत बातें बनाते हैं, तो उनने कुछ कहा आपको ऐसा जो आपको कोई बात चुभी हो या आपको लगी हो कि ये समाज की सोच गलत है या ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगी?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये इस विषय पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि इस विषय के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है और जो भी अभी भी ये बात सुनता है वो बहुत सारी बातें कहते हैं जो सही नहीं है और जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, अगर स्पेशली आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने लिया है तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। मैंने पहली बार ज्यादा लोगों को बताया ही नहीं था, मैंने डिसीजन लिया था एंड हमारी फैमिली के अंदर ही था, बिकॉज मुझे पता था कि बहुत सारी ऐसी कुछ बातें लोग कह सकते हैं जो सुनने में शायद अच्छी ना लगे, और मेरा डिसीजन तो पक्का था बिकॉज मुझे पता था कि मुझे ये करना है। आई डोंट थिंक कोई भी डॉटर कोई भी सन सोचेगा ऐसा कुछ करने के पहले, अगर उन्हें पता है कि उनके हेल्प से उनके पेरेंट्स की लाइफ बेटर हो सकती है, उनकी लाइफ बच सकती है, आई डोंट थिंक कोई भी बच्चा सोचेगा। तो मुझे पता था कि ये बातें सुनकर मे बी मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊँ, बट फिर भी कुछ रिलेटिव या कुछ फ्रेंड्स ऐसा कुछ बोलते थे कि नहीं वो बहुत यंग है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, उसके बच्चे भी नहीं हुए हैं, शी इज अ गर्ल। तो ये सब चीज मैं अपने अंदर में ये चीज अफेक्ट नहीं करने देती थी, बिकॉज डॉक्टर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे एंड सोसाइटी बहुत सारी बातें कहेंगी, बट साइंस इज डिफरेंट। और एनीबडी जो भी इस बारे में थोड़ा पढ़े, थोड़ा डॉक्टर से हो नो जिन्हें पता है इसके बारे में, अगर वो बैठ के बात करे उन्हें समझ आएगा कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस है और पूरा रिगरस एकदम जो टेस्ट होता है फॉर बीइंग फिट फॉर ऑर्गन डोनेशन, वो इतने लंबे टेस्ट होते हैं और जब तक एक पर्सन पूरा हेल्दी नहीं है तब तक उसे कंसिडर नहीं किया जाता टू डोनेट। तो जब ये सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई डॉक्टर से बात करके और जो भी मैंने अपना रिसर्च किया, तो मैं क्लियर थी कि इट इज द राइट डिसीजन एंड मैं अफेक्ट नहीं होने दूंगी कुछ भी कमेंट का अपने ऊपर, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, वो मेरा अप्रोच था। इनफैक्ट मैंने पहले मेंशन नहीं किया होगा बट मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ने टेस्ट के लिए हमने किया, बट क्योंकि मैं ज्यादा फिट थी एट दैट पॉइंट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, हालांकि दोनों ही मैच थे, दोनों ही फिट थे, बट डॉक्टर्स का डिसीजन था दैट एट दैट पॉइंट अकॉर्डिंग टू वेट अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग मैं ज्यादा फिट हूँ डोनेट करने के लिए, तो इसीलिए आई वॉज चोजन।
2: ओके, तो मैं बस ब्रेक में जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट के बाद कोई फर्क पड़ता है?
3: इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कशन किया था, मेरी फैमिली ने डिस्कशन किया था, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लेडी अगर अपना ऑर्गन डोनेट करे के बाद उसे बच्चे नहीं हो सकते। एंड अभी तक ऐसे मेरे कोई स्कूल के फ्रेंड्स भी है, लाइक मैं अपने एज के लोगों की बात कर रही हूँ, कि मैंने ऐसा डिसीजन कैसे लिया, मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं। तो वो मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ मंथ वेट करना होता है, लाइक इमीडिएटली ऑर्गन वुमेन शुड नॉट बी प्रेग्नेंट, लाइक ऐसा 6 months का थोड़ा गैप देना है कि बाद ऐसा कोई भी उसकी हेल्थ में

0: फर्क नहीं पड़ता है एंड हमें हेल्थ चेकअप एनी ऑर्गन डोनर बी इट फीमेल या मेल उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप एवरी ईयर में वंस कराते रहना चाहिए. तो हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना है फॉर श्योर.
1: तो मैं सभी श्रोताओं से एक बार फिर कुछ समय का ब्रेक लेना चाहूंगा. हम जल्द ही लौटेंगे और स्वरेखा जी के साथ अपनी वार्तालाप जारी रखें.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्ते, मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे एक कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। और स्वरिका जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, जो हमें अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बता रही हैं। इन्हें हमें काफी कुछ बताया समाज की सोच के बारे में। इन्हें हमें बताया कि प्रेगनेंसी में प्रत्यारोपण का कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। आइए चर्चा को आगे लेके चलते। तो स्वरिका जी, जब आपने निर्णय लिया कि आप अपना गुर्दा दान करेंगी, तब कागजी कार्य में कितना समय लगा और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि काफी सारे कागज भरवाते हैं अस्पताल वाले, काफी सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, उस बारे में मैं कहना चाहूंगी, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मार्च एंड में हमें पता चला था, अप्रैल से हमने टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, बट कागजी काम में इतना टाइम लगा। एंड जो हॉस्पिटल में भी कमी बैठती है, ये विद इन फैमिली डोनेशन की बात हो रही है यहाँ पे कि मेरे खुद के पापा को मैं अपनी किडनी डोनेट कर रही थी, बट उसमें भी इतने सारे चेक्स हो रहे थे ये प्रूव करने के लिए कि अब मैं एक्चुअल में डॉटर हूँ। एंड उसके बाद भी हॉस्पिटल में कमिटी बैठती है लास्ट में पूरे फैमिली के साथ, ये चेक करने के लिए कि मेरी इसमें पूरी सहमत, मैं सहमत हुआ इस डिसीजन से, कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है मेरे पे। तो ये विद इन फैमिली भी इतना सारा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा काम करना पड़ा था, जिसमें 2 से 3 महीने लग गए थे। पुलिस स्टेशन में जाना, वहाँ से वेरिफिकेशन लेना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डॉक्यूमेंटेशन के काम में उतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई थी, वो मेरी फैमिली ने किया था, बिकॉज मैं उस समय अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही थी। बट वो डॉक्यूमेंटेशन के काम में इतना टाइम लगा था कि हमारे लिए इट वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग, कि हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो जाए, ताकि मेरे पापा डायलिसिस में थे, तो मैं चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी डायलिसिस से फ्री हो पाए, वो अच्छे हो जाए, पूरा फैमिली ये चाह रहा था। बट बहुत सारी डिलेज हो रही थी ये सब प्रोसेस की वजह से। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये है विद इन फैमिली का प्रोटोकॉल, अगर कोई स्ट्रेंजर या नॉन रिलेटेड पर्सन डोनेट करना चाहे तो ये तो विद इन फैमिली का प्रोटोकॉल था जिसमें इतना टाइम लग गया। अगर किसी नॉन रिलेटेड पर्सन को डोनेट करना होगा तो वहाँ पे अलग कमिटी बैठती है, वहाँ पे जो सबमिट करना पड़े वो और भी ज्यादा लंबी चौड़ी होती है, उसमें और टाइम लग सकता है। तो ये एक सिचुएशन है जो मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग है कि इतने सारे लोग हैं हमारी कंट्री में, हमारी वर्ल्ड में, बट फिर भी ये प्रोसेस इतना ज्यादा टाइम टेकिंग है कि बहुत टाइम लग सकता है। ऑलरेडी एक फैमिली जो सफर कर रही है, ऑलरेडी एक पेशेंट जो सफर कर रहा है, वहाँ पे ये सब चीजों से और जब टाइम डिले होता है तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। जितना जल्दी हो पाए उतना बेटर है।
1: तो आप और आपके पिताजी अब कैसे हैं? अब क्या जीवन में बदलाव आए हैं? 1 साल हो गया आपके ऑपरेशन को।
2: करेक्ट करेक्ट। तो मैं और मेरे पिताजी बिल्कुल ही हेल्दी हैं आफ्टर ऑर्गन डोनेशन एंड वो आफ्टर रिसीविंग ट्रांसप्लांट। तो आफ्टर जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद ही लाइक उनका इमीडिएट बहुत ही अच्छा रिकवरी हुआ था। ऑल्दो बहुत सारे प्रोटोकॉल से बहुत स्ट्रिक्ट हमें रहना, इनिशियल 3 महीने बहुत क्रिटिकल, एक पेशेंट को जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है स्पेशली उसे बहुत बचा कर रखना पड़ता है, उसे रूम से नहीं निकलना होता बिकॉज वो इम्यूनो सप्रेसेंट भी खाते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन उन्हें बहुत जल्दी लग सकता है। एंड बहुत जो टेस्ट होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद वो भी बहुत रिगरस होते हैं, एक पेशेंट को पूरे वॉच में रखना पड़ता है, डॉक्टर्स के साथ फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद से ही उनके जो वैल्यूज थे, उनके जो रिपोर्ट्स थे, वो बहुत ही अच्छे हो गए थे। ऑल्दो मुश्किलें थी क्योंकि उन्हें एकदम बचा के रखना पड़ता था, वो हॉस्पिटल में भी मेरे से ज्यादा दिन थे क्योंकि वैसा ही प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसप्लांट पेशेंट को बचा के रखना पड़ता है, बट मैं बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश थे कि इतना बड़ा, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था कि इतना बड़ा चीज जो था वो अच्छे से हो गया, लाइक जो भी मुश्किलें थी वो खत्म हो गई और लाइक एक नया जीवन था हमारे लिए, मतलब दूसरा मौका मिला हमें जिंदगी में, एक तरह से आप बोल सकते हैं। एंड अभी वो भी बिल्कुल फिट है, वो अपने खाने का बहुत ध्यान रखते हैं कि वो हेल्दी खाए, और फिर वो इनिशियल जो शुरू के 3 महीने थे वो बहुत बचा के रहे, फिर धीरे धीरे वो घर से निकलने लगे और फिर जाने लगे, तो ऐसे ही उनका नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गया कुछ महीने के बाद। वो अभी भी अपने काम पे जाते हैं और मेरे लिए भी मैं अपना खास ध्यान रखती हूँ सर्जरी के बाद, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे फिट रहना है। मैं पहले भी लाइक फिटनेस के तरफ बहुत इंक्लाइन थी लास्ट 3 साल से, बट सर्जरी के बाद मुझे और भी ज्यादा इस तरफ इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फिट रहना है इसके बाद, और मोर देन एनीथिंग मुझे पता था कि मुझे एक एग्जाम्पल बनना है एक ऑर्गन डोनेशन के बाद भी एक पर्सन बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो मैंने स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किया क्या मुझे अपने नॉर्मल डाइट में खाना चाहिए फॉर अ क्विक रिकवरी, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और कुछ मंथ एक्सरसाइज करना मुझे भी मना था, रिगरस एक्सरसाइज, बट एक बार जब वो टाइम इनिशियल जो 3 महीने थे उसके बाद मैंने स्पेशल गाइडेंस लिया कि मुझे किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। अब तो मैं जिम भी जाती हूँ, मेरा पर्सनल ट्रेनिंग भी लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत श्योर होना चाहती हूँ कि जो भी मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ उनका फॉर्म करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, एंड मैं प्रॉपर गाइडेंस के अंडर कर रही हूँ। मैं खुद से भी कर सकती हूँ, बट अगर मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो मैं और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगी। तो इसीलिए मैं ये सब चीजों को लेके पहले से बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ अपने ओवरऑल हेल्थ पे।
1: स्वरिका जी, एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए, आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करते हुए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी ऑर्गन डोनेशन को लेकर, और आप क्या आखिरी शब्द कहना चाहेंगी जाने से पहले कि हम ऑर्गन डोनेशन को और बेहतर बना सके हमारे देश में?
2: वो मैं जाने के पहले ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस डिसीजन का कभी भी अफसोस नहीं हुआ। अगर मैं मुझे ये सब फिर से भी कभी करना पड़े अपने पापा की लाइफ को बेटर करने के लिए, मैं कभी सोचूंगी नहीं। एंड अभी जब मैं सब कुछ देखती हूँ कि मेरे ऑर्गन डोनेशन की वजह से मेरे पापा की लाइफ पहले से बहुत बेटर है, तो मैं एवरी डे मैं मुझे समझ आता है कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही डिसीजन लिया था। और जो फीलिंग होता है कोई भी ऑर्गन डोनर, जो भी ऑर्गन डोनेट करते हैं, जो भी लाइव ऑर्गन डोनर्स हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसके बाद जो एक फीलिंग होती है कि उनके वजह से किसी की लाइफ बेटर है, वो फीलिंग जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक पॉजिटिविटी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी कि आपने ऑर्गन डोनेट किया एंड उसके वजह से किसी का अच्छा हुआ। और मैं कहना चाहूंगी कि इस चीज को लेके एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस की अभी भी बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि एक ऑर्गन डोनेशन के बाद भी लोग फिट रह सकते हैं, और इनफैक्ट लोग फिट रह सकते हैं आफ्टर दिस।
1: धन्यवाद स्वरिका जी हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ बदलाव जरूर आएगा, और हम सारे अपने दर्शकों से अलविदा लेना चाहेंगे अगली बार तक। हम जल्दी ही मिलेंगे, और तब तक आप हमारी वेबसाइट पे अपना प्लेटफॉर्म भर सकते हैं www.organindia.org, और कोई भी ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें 1800 120 3648। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहु ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी

नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: तलाशने के लिए एलस्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा

28 जुलाई को होगी। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

काश तो मैनू मिल जाना हुंदा, काश मैं तेरे ते यकीन नहीं किता हुंदा, काश तू बेवफाई ना हुंदा, या काश मैं ही बेवफा हुंदी, शायद ए हाल ना हुंदा मेरा।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुंगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशोता बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तेने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

तहां बोला दे न रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनदे ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें। तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ देन कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

तुहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम जग गए इन्हें सुनते निक और प्यारा दिया गीत

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चले है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने तो श्रोताओं बढ़ देन कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारे कार्यक्रम सुनांदे थे माटी दी महक। तां श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही। तो तोहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

नमस्कार श्रोतो मेरा नमस्ते स्वीकार करे तो है सब आऊं तुंदा अपना आरचे सचिन कपूर हा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा वेडी गुंजन धर्मशाला मंच तो सब जहाँ फ्रिक्वेंसी बुंडरन सोहा 91.2 मेगाहर्ट्स ताई ये श्रोतो हिंदी अपनी गप्पा कार्यक्रम मा बहुत सारी गल्ला बुनी आज बहुत सारी गल बात की आज बुनी हा आगाज कर लेन देन कार्यक्रम रे इस गीता सोगी फिर तथों बाद मुल्दन तुसु सभी सोगी।

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इंदी अपनी गपागन सो चल रही हिन छतो तैया कार्यक्रम में इस प्रकार सो गे किया सो आई हैव अ बर्थडे हिन और अक्सर बोलनो कि माँ बाप री सेवा करे तो अक्सर मेरे हर कार्यक्रम में ही हूं बुरा हाश हो तो कजो की आज है अगर आंकड़ा चेक करिए वृद्धा आश्रम में किया सो आंकड़ा बड़ू करता है और ये आंकड़ा किया सो दिन प्रतिदिन बढ़ू करता है सो तो इतना कोई दोहराए नहीं। माता पिता के अनुश्वासु वास्ते बहुत कुछ करते हैं जो तिन्ने आपू वास्ते ने गुरु बंदा सो भी सो अपनी उलवादी वास्ते किया सो करते हैं सो तो बहरहाल गल बात कर ले लेकिन लेके चल दे तू सभी जो इस प्यारे दे गीत तारी के नारी

वेडी गुंजन धर्मशाला एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी का पगन है सो चल रही और कार्यक्रम मंच ये ऐसू बने रहना है है करू कर दे थी ये गल बात की वृद्धा आश्रम में के आस वाकड़े बड़ो कर दे हिन और माँ बाप इन देखे न स्वसु वास्ते भगवान बुने चिंदे लेकिन कुछ सोच के सो मन उरे बदले के छोरे हर्षो तो कुछ अलग ही सोच और कुछ अलग ही सोच पर के सो मन इस समय चल रहा है। ये जो जनरेशन है बाकी में माँ बाप रे की ऐसो इज्जत ना करे राजे माँ बाप रा सम्मान ना करे राजे ऐसा नहीं कि मतलब 100% युवा के अंसो ऐसे ना मतलब अद्धे हिन हद्दे नहीं बिन है ना 50-50 लेकिन आहुन तिजना सभी युवा जो संदेश देना चाहता हा कि तो है आज जड़ी बिन जस भी ठारी मोल पुजुरे हिन जड़ी भी कमाओ कर दे जी भी अपने घर रा परिवार रा या अपना खर्चा करू कर दे हिन सो सिर्फ और सिर्फ तुंदे माँ बाप री देन हा शोतो अगर तिन्या तू सो इस लायक बनू रहा कि तू है सब कुछ किया सो कर ही सकन चल ही सकन बल ही सकन और कमाई सकन है ना। बहरहाल कार्यक्रम जो लेके चलते है गुआ हुन दिन तू सोए प्यारे दिया गीत एफएम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और आऊँ कार्यक्रम होस्ट करो कर दा तुम अपना आरजे सचिन कपूर कार्यक्रम मंच थोड़ा करे और हगो बढ़ दे हिंद छो और लेकर चल दे तू सभी जो इस प्यारे दे गीतारी कनारी

रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और सचिन कपूर जो तो है हुनु कर दे हिन बिल्कुल लाइव अपने रेडियो सेट पर। कल बात चल रही है आज कि वृद्ध आश्रम गया सो आंकड़े थोड़े करे बड़ू कर दे कई ऐसा बुच्छू करता है अपने माँ बाप री सेवा कौ ना करे पाओ कर दे जद माँ बाप के आसो अपना मतलब मुझे लगता कि तिन्यो अपनी लुआदी थो कुछ न चिंता बंदा बुढ़ापे अंदर के आसो सिर्फ और सिर्फ तिन्यो ये चिंता बंदा कि सो हसी करे सोगी बही करे कि आसो खाई लैन सोगी बही करे दुई बुजे तिन्यो भी खुआइन प्यारे हो गए और अपू भी किया सो खाई लैन। लेकिन इनके आजकने जो युवा नहीं आ रही मानसिकता की आ सो कुछ और ही दर्शन दी है जो मानसिकता की आ सो कुछ और ही बल दी है न जाने कयो ऐसा है कोई ना युवा समझे भाव करदा कि माँ बाप ही के सो भगवान रो रूप न और अगर तुसो मंदिर गाने वा समय ना भी लगू करता और तू है माँ बाप री सेवा करे और करू कर दे तो तुसो सो फल प्राप्त किया सो जरूर बुना हा अपने कर्मा जो किया सो खरा रखा श्रोता हूँ हमेशा बलदा लेकिन इडी था कर्म तो है अपने बहुत बुरा करू कर दे अगर तुमने माँ बाप तू सो गिने ना तुमने कर्म के न सो कदी खरे न बुझ सकते तू है अपने माँ बाप रे दिल अगर दुखाओ कर दे तो तुमने कर्म कदी ठीक ना बुझ सकता सो कर्म तुमने बुरा ही न फिरे बरहाल कार्यक्रम जो हागो बढ़ने और बढ़ने गीत

91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सब ये ट्यून करो और कार्यक्रम का आनंद लेव कर देन तो सब हिंदी अपनी गप्पारा भरपूर आनंद लेव कर देन अपने रेडियो सेट में आऊ सचिन कपूर रा और कार्यक्रम जो होस्ट करो करता है श्रोतों बरहाल एंजॉय कर देने प्यारा दे गीत मिल देन इस गीत बाद

वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अंश चल रही है। ता श्रोता हूँ कार्यक्रम में थोड़ा करे और हवा बढ़ते हैं और गलबात चल रही है तो बखूबी जानू कर दिन की कटेरी गलबात कैसे चल रही है। तब मुझे ये लगता कि तू है सो कस कीड़ा खड़ा कर दिया ना और अपने माँ बाप रा दिल के सो दुखाई लिया तो सो करूरा सो मूल्यवान नहीं है, सो बिल्कुल जीरो है। तो बेशक गायो रोटी खुआई लिया, पेड़ा दे लिया, बेशक तो है जो अवारा डोगीज ना अवारा कुत्ते तीनों तो बिस्कुट खरीदी करेगी ऐसो दे दिया। इन सभी चीज़ रा कोई महत्व ना रह गंदा, इन सभी चीज़ रही कोई इंपॉर्टेंस की श्रोताओं सो ना रह गंदे। चलिए फिलहाल है लेकिन चल दिन तुसु इस गीतारी किनारे और फिर वापस मिल दे हिन। जे तक तो माँ बाप री सेवा न करे ना ते तक रे सब कुछ किया सो बिल्कुल जीरो हा। गीतारी किनारे चल दिन वापस मूल दिन।

तशोतों गलबात चल रही है, कर्मारी गल भी करू कर देन है ना कि अह बेशक हजार चीज और कर लें लेकिन माँ बाप रे दिल दुखान छोतों तो सो मायने न रख दे। सो कर्म बिल्कुल जीरो और कर्मारी सजा किया छोतों यह गल्ला ध्यान दिया जरा कर्मारी सजा किया सो जरूर मोल दे हा। मैं बड़े बड़े अं विद्वाना सो की भी रहा बड़े बड़े गुरु जी हो की भी रहा हा लेकिन मुझे ये लगता जो मैं सीख रहा सो ये सीख रहा मैं कि अगर तो है मोर है आंचल मकिया सो पलो कर देन और मौ जो खुश रखो कर देन फादर साहब जो खुश रखो कर देन ता तो है कमाल इन तो है धमाल इन और तो है सब कुछ इन फिर हम बलोंदा ना बेशक मंदिर गाने का समय ना लगा लेकिन मौ बड़ी री सेवा किया सो जरूर करा था थी मैं बहुत प्यार है बहुत ताकत आ बहुत आशीर्वाद आ और माँ जने मुंडे पर हाथ फेरेंदे ना तो तुंदी आधी टेंशन दूर बचगंदी अद्धे ग्रह तुंदे दूर बचगंदे इन छोतो अजमाई करिए रहे तो है बहरहाल हगो चल देन और लेके चल दें तुसु इस गीत तारी कनारी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना सो बिल्कुल लाइव चल रही है ना। चलिए गीत संगीत रा जो सिलसिला सोई है चलते रहना, इस सिलसिले जो बरकरार रख देना और लेख लिखन दे तो सो इस गीत तारी कनारी।

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम मिंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही हैं श्रोतों तब हम दसो करता तो श्रोतों की किस प्रकार हो गए क्या असुओ माँ बाप री सेवा के असो करने हा है ना और सो भगवान रा रूप ने त्यारा ख्याल रखना त्यारा ध्यान रखना त्यारे दुआ पूरे टाइम मरे भुआ तिन्यो खाना पीना टाइम मरे मुड़ा ये सब किया सो आके पुत्र रे फर्ज बन दे हिन अग दिवा रे फर्ज बन दे हिन नुगा रे फर्ज बन दे हिन शो तो और मुझे लगता ऐसी नुका हूं तो फिर नुका ना बुन जो मोबड़े लक कराऊ कर दी हिन जो मोबड़े हो किया सो वृद्धाश्रम किया सो भेजी छू कर दी ऐसी नुका हूं तो फिर नुके ना बहुत आना खरा तक पुत्र कुआरे ना करे फिर चलिए बहुत सारी कुछ गल्ला ऐसी बुझ गंदी हिन कि जतिमा बैलेंस करना किया असो दिक्कत चलें दिया अक घरेलू किस्से मंच लेकिन तड़ी बैलेंस किए सो पुत्रा जो ही करना हा जो कि लाड़ी भी नुका भी कहन सो बगाने घर तो आई अपने माँ बुढ़े छड़ी करी आई ने त्यारा मान सम्मान भी करा त्यारा इज्जत भी करा और होप सो कि कार्यक्रम तुसु पसंद आ भूना हा बस तगंद गंद जी हर बार बलनो हर कार्यक्रम में बलनो हर स्टेज में बलनो श्रोताओं की माँ बाप री सेवा जरूर करा तो है आज जो भी ना सिर्फ और सिर्फ तैयारी बदौलत है सिर्फ और सिर्फ तैयारी मेहनत री वजह था कहना सो तू है आज जड़ी बिन जो बिन सो तू है पूज रहे यह गल्ला थोड़ा करे एनालाइज किया सो जरूर करा इस भाग दौड़ भरी जिंदगी था यह गल्ला जो एनालाइज जरूर करा कि तू है आज जो बिन सो सिर्फ अपनी माँ बुढ़े री वजह था बहुत मेहनत बुने तुम देवी ना काफी मेहनत बुने तुम दे भी लेकिन तीन यारे बराबर मेहनत ना है करी सकते ना है करी पल्ले कदी आगो भी तो बहरहाल आऊं सचिन कपूर ले लेने तो सुत हो इजाजत हंस दे रहा मुस्कुरा दे रहा और रेडी गुंजन मार जे सचिन कपूर जो हुई हैं हुन दे रहा नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका देगा साथ, ट्रंप का कहना ईरान से डील कल संभव, शर्तें न मानी तो फिर बरसाएंगे बम, मांगे नहीं मानी तो 25 जून से थम सकते हैं बसों के पहिए। वन विभाग पहली बार अपनी नर्सरी में तैयार करेगा कचनार के पौधे। अब समाचार विस्तार से।

11 केवी वरवाला फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों फतेहपुर, सिद्धपुर, तपोवन, बागनी, झियोल, बरवाला आधुनिक स्कूल, छेंटी तथा बरेह में 20 जून को सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। सामान्य रखरखाव कार्य के कारण 33/11 केवी सबस्टेशन शाहपुर और 33/11 केवी सबस्टेशन दरीनी के तहत आने वाले क्षेत्रों रैत, प्रेई, भागड़ू, बसनूर, शाहपुर, मझियार, झंगी, डोहव, कियारी और इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में 19 जून को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा के प्रावधान होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच डील शुक्रवार को हो सकती है। G7 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात के दौरान उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है और अभी कई बातें तय होना बाकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो अमरीका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हम फिर बम बरसाएंगे। HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार दोपहर 1 बजे शिमला के पुराने बस स्टैंड पर कर्मचारियों ने वित्तीय लाभ और देनदारियां न देने पर प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि गेट मीटिंग का आज 9वां दिन है और ये आंदोलन 24 जून तक जो है वो जारी रहेगा। चेतावनी दी गई है कि यदि 24 जून तक कोई समाधान नहीं निकला तो 24 जून को रात 12 बजे के बाद प्रदेश भर में HRTC चालक परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे 25 जून से प्रदेश भर में HRTC बसों के पहिए थम सकते हैं। वन विभाग अपनी नर्सरी में कचनार के पौधे तैयार करेगा। कचनार अपनी पारिस्थितिक, औषधीय और जैव विविधता संबंधी महत्ता के लिए जाना जाता है। ये पौधा प्रदेश के हर जिला में होता है। अभी तक प्राकृतिक रूप से ही जंगलों में उगता है। इसके औषधीय गुणों को देखते हुए विभाग इसकी नर्सरी तैयार करेगा और लोगों को पौधे लगाने के लिए भी दिए जाएंगे। कचनार की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है और उसे सब्जी के लिए उपयोग किया जाता है। पेपर लीक विवाद के बाद नीट UG की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में किसी तरह कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ केंद्र व राज्य सरकारों ने पूरी सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। हालांकि परीक्षा में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद NTA ने अपने पूरा तैयारी कर ली है, जो न सिर्फ परीक्षा से जुड़ी किसी तरह की झूठी जानकारी पर पैनी नजर रख रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों की धरपकड़ में भी जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। 1-8 जिलों में छोटे अध्ययन में प्रदेश के संधारियों में इस बीमारी का व्यापक संक्रमण पाया गया है।

86 वर्ष पुरानी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। परियोजना से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला जिलों के 2092 लोग प्रभावित होंगे। जानकारी के अनुसार प्रभावित 8 गांव में से 6 गांव सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल और 2 गांव शिमला जिले में स्थित हैं। परियोजना के वर्तमान स्वरूप के अनुसार टॉस नदी पर 236 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट होगी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में मकानों की गणना 15 जुलाई तक पूरी की जानी है। इस प्रक्रिया को सुचारू और सटीक बनाने के लिए जनगणना अधिकारियों को राजस्व विभाग के कानूनगों और पटवारियों की मदद लेने की अनुमति दी गई है। जनगणना कार्य के दौरान यदि किसी क्षेत्र की सीमा, राजस्व रिकॉर्ड या गाँव की भौगोलिक स्थिति को लेकर कोई संशय उत्पन्न होता है तो संबंधित कानूनगो और पटवारी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध, क्षेत्र की सीमा पर संशय होने पर कानूनगो पटवारी जानकारी कराएंगे उपलब्ध। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पहले भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच के बाद अब घरेलू क्रिकेट का खुमार चढ़ेगा। यहाँ सीनियर अंतर जिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अहम मुकाबले खेले जाएंगे। यहां प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले 24 जून को जबकि फाइनल मुकाबला 25 जून को खेला जाएगा। सीनियर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग चरण के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पूल ए से शिमला और मंडी की टीमों ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। भारत के रणनीतिक भंडार देश की कुल क्रूड जरूरत का सिर्फ 9 से 10 दिनों तक ही सहारा दे सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक मंच काउंसिल ऑन एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार तेल आयात और अत्यधिक निर्भरता के बावजूद भारत का भंडार जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। इन देशों में 200 दिनों से अधिक की जरूरत के बराबर रणनीतिक भंडार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के मसरूर हमल सड़क पर छतरूर के निकट गत रात्रि हुई सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। जनजातीय विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या में यौन संचारित रोगों की व्यापकता, जोखिम कारकों एवं उपचार खोज व्यवहार विशेष शोध अध्ययन की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास ओंकार चंद शर्मा ने जारी किया। जिला चंबा, किन्नौर एवं लाहौल स्पीति के 3000 प्रतिभागियों पर आधारित इस अध्ययन में जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोगों से संबंधित लक्षणों, जागरूकता, जोखिम कारकों एवं उपचार प्राप्त करने के व्यवहार का आकलन किया गया है। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

नमस्कार सभी श्रोताओं को और हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो अब से लेकर के रात्रि 8 बजे तक रहने वाले हैं हम आप सभी के साथ और आप जानते ही हैं ये हमारी संध्याकालीन सभा है और संध्याकालीन सभा होती है अब शुरू। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और हमेशा की तरह ही कार्यक्रम में होंगी बहुत सारी बातें, आपको बताएंगे हम कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और एक नहीं है बहुत सारे हैं, उनके सभी के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी, लेकिन जो एक मुख्य दिवस है ना उसके बारे में तो ढेर सारी बातें होने वाली हैं। कुछ कहानियाँ किससे भी आपको सुनाएंगे हम जी अपनी ही यात्रा से रिलेटेड कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ जब हम गए थे, कहाँ वो अभी सस्पेंस है, थोड़ी देर में खुलेगा हमारा पिटारा। खैर आपको बता दूं कि 18 जून में हम पहुंच गए हैं, आज है बृहस्पतिवार और आप सभी लोग अपने अपने घरों में वापस जा रहे होंगे, क्योंकि जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो सड़क में इतनी भीड़ थी, इतना रश था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रैफिक की रैली चली हो, रैली मतलब, और मैं भी उसका एक हिस्सा थी, मतलब मैं कोई अलग नहीं थी, तो उस रैली में मैं भी पार्ट ले रही थी। और अक्सर ऐसा ही होता है जब 5 बजते हैं ना, या तो आप 5 बजे से थोड़ा सा पहले निकल आओ घर से तो थोड़ा सा हमें सड़क जो है वो खाली खाली मिलती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बायोमेट्रिक होने के बावजूद भी लोग जो हैं अपने ऑफिसेस से 5 बजे से पहले ही

मौसम से रिलेटेड ही गीत है ये, और आइए एंजॉय करते हैं, सुनते हैं।

जी, लो मौसम सुहानी आ गई। जुदाई फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सुना। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और ऐसे ही सुहाने मौसम होते हैं ना, कि जब हमें घूमने फिरने का भी मज़ा आता है। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। मनाई तो आपने नहीं होगी, और पिकनिक मनाए कितना समय हो गया है आपको, वो भी ज़रूर सोचिएगा।

क्योंकि पिकनिक एक ऐसी याद है ना कि जो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आज के संदर्भ में अगर हम पिकनिक का नाम लेते हैं तो बच्चे शायद समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये पिकनिक भी कोई चीज़ होती थी जिसे कि हम खूब एंजॉय करते थे। खैर, इस बारे में बात हम ज़रूर करेंगे कार्यक्रम में आगे। आपको भी मौसम का हालचाल बता ही देते हैं कि कैसे सुहाने मौसम है भाई। आज तो गर्मी पड़ी है, ठीक ठाक ही गर्मी, और इस समय अगर बात करूं तो धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और हवा में जो नमी है वो है 55%। आज रात को बारिश की संभावना है लेकिन बेहद कम है, 5% से लेकर 15% तक, इसलिए मौसम आज शुष्क रहने की भी उम्मीद है अभी इसके बाद। और अगर कल की बात करें तो फिर कल थोड़ी हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, 50% चांस है कि बारिश हो सकती है, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ये तो अब कल ही पता चलेगा 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बता रहे हैं गूगल महाराज। तो कुछ इस तरह से आज का जो हमारा मौसम है वो बना हुआ है श्रोताओं। और इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपको सुनवाते हैं और एक खूबसूरत गीत। ये गीत है पंजाबी गीत, जी पंजाबी गीत है, बड़ा ही धमाल मचाने वाला गीत है, तो आइए सुनते हैं इस गीत को हरभजन मान की आवाज़ में।

जी हाँ श्रोताओ, चोरा नु पंदे कदो मोर कुछ पता नरेंदा। ये गाना जो था ये गाया हरभजन मान ने। आप हमें सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि आप हमें देख भी पा रहे हैं हमारे फेसबुक पेज से लाइव, और ये कार्यक्रम भी रेडियो सेट से भी लाइव है और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें लाइव देख सकते हैं।

श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। सुबह से लेकर के अभी तक तो आपने पिकनिक के बारे में बहुत कुछ सुन ही लिया है ना, हमारे रेडियो से भी सुना और चैनल से भी सुना होगा। काफ़ी जगह से पिकनिक के बारे में बात हो रही है और कुछ ना कुछ आपने भी अपनी यादें ताज़ा कर ही ली होंगी कि कैसे आप लोग भी पिकनिक पर जाते थे,

श्रोताओ, मैं तो यही कहूंगी कि हाँ जाते थे, क्योंकि भाई हम भी जाते थे ही, अब नहीं जाते हैं क्योंकि अब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है। और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने लिए ही सुकून के कुछ पल निकालना मुश्किल हो जाते हैं, तो हम पिकनिक कहाँ से जाएंगे। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? ज़रा सोचिए। और पिकनिक जो है ना, वो ऐसा नहीं होता था कि भाई सिर्फ हमें घूमने फिरने जाना है तो हम उसको कह दें कि पिकनिक पर चलते हैं जी सब मिल करके। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता के साथ जाना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं उनकी, तब तो कोई पसंद होती ही नहीं है, तो माता पिता को लगता है कि इन्हें ले चलते हैं कहीं अपने साथ, तो उसका नाम दे दिया जाता है पिकनिक। लेकिन हर सैर सपाटा, हर घूमना फिरना पिकनिक नहीं होता है। पिकनिक के लिए हम घर से बहुत सारी तैयारियां करके चलते हैं, मतलब पहले तो चलते ही थे, अब इसका रूप स्वरूप कुछ चेंज हो गया है, वो भी बात बहुत हुई आज सुबह से हुई। लेकिन वो ना, वो क्षण, वो पल मुझे आज भी याद आते हैं कि जब हम सुबह से ही तैयारी शुरू कर देते थे और इस पिकनिक की एक्साइटमेंट 2-3 दिन पहले से होती थी हमें कि हमें पिकनिक जाना है, क्योंकि तैयारी करनी होती थी तो सबकी सहमति लेना भी ज़रूरी होता है कि हाँ स्कूल में भी छुट्टी होनी चाहिए बच्चों के, और उन्हें कंफर्टेबल भी होना चाहिए वो जगह जहाँ पर हमें जाना है, साथ में कुछ वाटर बॉडीज़ भी होनी चाहिए ताकि पानी की कोई कमी ना हो, और बच्चों के खेलने का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, है ना। सब चीज़ें, सब बातें ध्यान में रखी जाती थी। और साथ में क्या क्या हमें लेकर जाना है, देखो खाना बना करके तो लेकर जाना ही है साथ में, क्योंकि बाहर इतने जैसे अब हो गए हैं कि जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, हमें रेस्टोरेंट्स मिलते हैं और खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाते हैं ऑप्शंस, तब नहीं होते थे, तब बहुत कम कम होते थे। तो बस यही था कि घर से क्या हम ऐसा बना करके लेकर के जाएं जो कि दोपहर तक ख़राब भी ना हो, और जहाँ पर हम थक हार करके कहीं अपनी चद्दर बिछा करके, अपनी चटाई बिछा करके वहाँ बैठ जाएं, जाकर उस लोकेशन पे पहुँच कर और बच्चों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें ले जाएं, जैसे कि चिड़ी छिक्का, समझते हैं ना आप चिड़ी छिक्का, हाँ बैडमिंटन जिसको अंग्रेज़ी में बैडमिंटन कहते हैं, तो वो सारे गेम्स रख लिए जाते थे, कैरम बोर्ड भी रखा जाता था कई बार तो साथ में, ऐसे छोटे छोटे गेम्स लूडो वगैरह इस तरह की चीज़ें रख ली जाती थी कि ताकि बच्चे आसपास भी रहें और कहीं दूर भी ना निकल जाएं, और मैदान है अगर तो हाँ मैदान में भाग दौड़ सकते हैं, वो उसके लिए कोई मना ही नहीं है, तो बच्चों में भी बहुत खुशी होती थी। और इस तरह से फिर होता क्या था ना कि मम्मी की बड़ी हेल्प हो जाती थी खास करके उस दिन, वो कैसे बताऊंगी आपको एक गीत के बाद।

जब वी मेट फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मोहित चौहान की आवाज थी। श्रोताओं, अब समय हो गया है हमारे स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक 6:30, वैसे 1 मिनट ऊपर हो चुका है, तो अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जी, छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं हम, करने आप सभी से बात। जी, छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं हम, करने आप सभी से बातचीत। श्रोताओं, तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप इस समय बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है, 6:30 बज गए हैं, तो आप लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच ही गए होंगे। तो चलिए जल्दी से जाइए और फेसबुक पेज को ऑन कीजिए अपने मोबाइल में और वहां पर टाइप कीजिए रेडियो गुंजन धर्मशाला या फिर 91.2 FM। जैसे ही टाइप करेंगे आपको हम लाइव दिखेंगे। जी, हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, अपने कार्यक्रम में भी अभी फ़िलहाल लाइव ही हैं, रेडियो सेट पर भी आपके लाइव ही हैं। और काफ़ी दिनों से ये सिलसिला जारी ही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आज आपसे हम करने वाले हैं, विश्व पिकनिक दिवस के ऊपर। तो आज 18 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस है, पर सच बताऊं जब मैंने सुबह सुबह ये देखा कि हाँ, और जब मुझे पता लगा कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक

दिवस है चाहे अई पिकनिक दिवस, पिकनिक भी कोई दिवस होता है क्या? लेकिन हाँ, अब ये भी एक दिवस बन चुका है। बना तो काफ़ी समय से है, लेकिन लेकिन सच बताऊँ, जब ये वर्ड सुना ना, तो दिल में एक अजीब सी कसक मेरी उठी। दिमाग सीधे 90 के दशक में चला गया मेरा तो, क्योंकि बचपन के वो दिन याद आ गए कि जब हम सच में पिकनिक मनाने कहीं कहीं जाते थे, और जब हमें सुनाई देता था ना कि माता पिता कहते थे कि हाँ अब हम ना इस दिन पिकनिक मनाने जाएंगे, और वो शब्द सुनते ही रात को नींद उड़ जाती थी। और जब तक हम पिकनिक पर पहुंच नहीं जाते थे ना, ऐसी एक्साइटमेंट होती थी कि भाई आपको क्या बताएं। लेकिन आजकल के बच्चों में कहाँ है वो चीज़ें? सब कुछ तो उन्हें मिल रहा है, उन्हें क्या पता है पिकनिक होती क्या है? उन्हें तो बस ये पता है कि हम गाड़ी में बैठेंगे, या फिर घर से तैयार होके जाएंगे, या कोई व्हीकल लेंगे और बस दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर थोड़ी सी मौज मस्ती करेंगे, बाहर दुकानों पे कुछ खाएंगे पियेंगे, चौपाटी करेंगे, और फिर घर वापस आ जाएंगे थोड़ा सा घूम फिर करके। बस वो हो जाती है उनकी पिकनिक। असली पिकनिक क्या होती है पता है ना आप लोगों को? आप जितने भी सारे हम हमारे जैसे एज के हैं, सबको पता है। कभी कभी अपने इन पिकनिक के दिनों को अपने बच्चों से साझा भी करा करें, ताकि उन्हें भी एक्साइटमेंट आए, वो भी आपसे अर्ज करें कि हाँ चलो हम भी पिकनिक पर चलते हैं, सारा सामान घर से ही बना करके लिए चलते हैं, बाहर से हम कुछ नहीं लेंगे, कहीं कुछ रह गया अगर आपकी लिस्ट में तो आप बाहर से ले भी सकते हैं, क्योंकि अब तो फैसिलिटी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए सब कुछ अपने घर से ही रेडी करके अपने साथ लेकर जाइए। हाँ देखो क्या मज़ा आता है ना? पर फिर भी ये बात तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार हमारी वो दिन चले कहाँ गए? क्या पिकनिक वाकई में एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई है, या आप में से कुछ लोग अभी भी मनाते हैं पिकनिक? कुछ श्रोता हमें देख रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि वो कमेंट करें और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय पर कुछ कहें, और साथ में इस लाइव स्ट्रीम को लाइक भी करते चलें। और वो जगहें कैसी चुनते थे आप पिकनिक मनाने के लिए? अगर आज भी आपको कहा जाए कि पिकनिक मनाने जाना है, तो जगह तो मन माइंड में आती है ना कि हम ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, तो कैसी जगह होनी चाहिए? चलिए इस गीत के ज़रिए बताते हैं आपको कि जगह कैसी कैसी होनी चाहिए, या हमारे हमारा जो दिमाग है वो कैसी जगह के सपने देखता है पिकनिक मनाने जाने के लिए।

जी, प्यार मिले तो रुक जाए। और भाई, इंसानी जो नेचर है वो भी ऐसी ही होती है। इंसान क्यों, अगर पशु को भी जहाँ प्यार मिलता है ना, पक्षियों को भी, वो वहाँ पर लौट लौट करके आते ही हैं।

तो समीर फिल्म का ये गीत आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और इस समय मेरे साथ हैं मेरी टेक्निकल असिस्टेंट रुचिका। मैं देखो रुचिका यहाँ पर मतलब यंग सी लड़की है ये, हमसे बहुत छोटी है और सारी के सारी जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं ना ये संभाल लेती हैं। मतलब डबल ट्रिपल काम करती हैं यहाँ पर, वीडियोस भी एडिटिंग करती हैं साथ में ऑडियो एडिटिंग भी करती हैं। और आपको गुड मॉर्निंग धर्मशाला, गुड इवनिंग धर्मशाला में सुनाई भी देती हैं, तो सारे काम ये कर लेती हैं। उतने काम हम नहीं जानते भाई, तभी तो ये हमें असिस्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ में हम लोग थोड़ा सा ढीले हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, जितना जितना हमें आता है हम भी अपना पूरा पूरा योगदान देते ही हैं यहाँ। खैर आप हमें हमारे अपने रेडियो सेट्स पर भी सुन रहे हैं और फेसबुक पेज से लाइव भी देख रहे हैं, यह हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो अब इन मोमेंट्स को एंजॉय भी कर सकते हैं आप हमें लाइव देख करके, जो कि पहले कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लगता होगा कि ये कैसी आवाज़ें हैं, इनकी शक्लें कैसी होंगी है ना। सब लोग अपने अपने मन में आकृतियां बनाते हैं। और मैं बार बार यहाँ से कहती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना और रेडियो मैं सुनती थी, मैं बचपन से ही रेडियो सुनती चली आ रही हूँ, और शायद वही मेरी लगन थी कि आज मैं रेडियो पर लाइव बात भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को दिखाई भी दे रही हूँ। तो उस वक्त ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी, उस वक्त हम सिर्फ अनाउंसर्स को सुन ही पाते थे। और जो भी कोई काम करती थी ना मैं, तो मुझे बस यही मन में एक लगन थी कि काश मैं भी ना इस डब्बे के उस पार चली जाऊं और मैं भी वहां से अपनी आवाज़ लोगों को सुनाऊं, अब दुनिया तक पहुंचाऊं कि भाई

मैं भी हूँ, मेरी भी आवाज़ है। तो ये लोग कैसे बोलते होंगे, कैसे करते होंगे काम, कैसे दिखते होंगे? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हमारे को ये होती थी कि ये कैसे दिखते होंगे। हम उनकी आकृतियाँ अपने मन में बना लेते थे कि छोटे से होंगे, नाटे से होंगे, मोटे से होंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ों को के आधार पर, किसी की आवाज़ भारी है तो वो पक्का मोटी होगी, हाँ, और अगर पतली है तो वो पतली होगी, इसकी नाक ऐसी होगी, मतलब इस तरह से हम सोचते थे। आप लोग भी तो ऐसे ही सोचते होंगे, लेकिन अब देखिए, आप हमें देख भी सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो आपने जो आकृति हमारे अपने मन में बनाई होगी या बनाई थी, उससे हम मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जरूर बताइएगा हमें यहाँ पर लाइव, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, विषय से भटक गए, हम पिकनिक की बात कर रहे थे। आज हम आपको पिकनिक के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे ना कि आप बस कुछ ही दिनों में पिकनिक जाने का प्लान बना ही लेंगे। कुछ लोगों ने तो माइंड में अभी ही शुरू कर दिया होगा कि हम ऐसे जाएंगे पिकनिक, ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, है ना? तो याद कीजिए कि तैयारी शुरू हो जाती थी रात से ही। मम्मी रात से ही पूड़ी, सब्जी, अचार, आम की भांके पैक करने लग जाती थी, क्योंकि उस वक्त वही एक कुछ साधन होते थे और वही चीज़ें जो होती थी ना, वो ख़राब नहीं होती थी, चाहे आप गर्मी में पिकनिक चले जाएं, चाहे आप सर्दी में चले जाएं। पूरा कुनबा हमारा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, क्योंकि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते थे और होते भी सब जॉइंट फैमिली ही थे, तो इसलिए। और कहीं अगर कोई गली का कोई दोस्त मिल गया और वो कह देता है कि भैया मुझे भी जाना है, तो उसको कैसे छोड़ोगे आप, आखिरकार तो दोस्त ही है। तो सब मिल करके या तो एक बस कर लेते थे या फिर किसी वैन में ठुसा ठुस भर जाते थे। सब मिलके रास्ते भर अंताक्षरी खेलते थे, चलती थी अंताक्षरी। और सबसे बड़ी बात कि ना कोई मोबाइल होता था और ना कोई वाईफाई होता था हमारे पास। हमारे पास होती थी बस क्रिकेट की किट, जो लोग लड़के होते थे उनके पास क्रिकेट की किट, बैडमिंटन, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि बैडमिंटन के रैकेट हम साथ में लेकर चलते थे, और अगर कहीं गलती से वो चिड़ी छूट जाती थी ना, तो फिर हाल दुआई मच जाती थी, फिर ढूंढी जाते थे बाजार जहाँ पर कि हमें वो शटल कॉक मिल जाए, है ना? और साथ ही हम रखते थे चटाई अपने पास बैठने के लिए, और पानी का एक बड़ा सा कैंपर भी रखा जाता था कि अगर नहीं मिला पानी आसपास में तो क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, पानी तो सभी को ज़रूरी है ना, खाना खाना वगैरह खाने के बाद पानी भी तो चाहिए, और बच्चे खेलते हैं तो भी उनको पानी चाहिए। तो ये सारी पिकनिक अभी यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहते हैं क्या? हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस पिकनिक को। एक और गीत सुनते हैं।

बिल्कुल, जीवन के दिन चाहे छोटे ही हों लेकिन उन्हें जीना कैसे है ये तो हमारे अपने हाथ में है ना भाई। और उन्हीं छोटे छोटे दिनों से कुछ पल चुरा करके हम हमेशा चलते हैं, या फिर यूं कहूँ कि आपके लिए लेकर के भी आते हैं कुछ पल चुरा करके, कुछ ऐसे पल पिकनिक जाने वाले। खैर अभी तो आप अपने घरों में बैठे हैं ना, तो प्लान बना लेंगे ना फिर जाने के लिए। उम्मीद करती हूँ जाते भी होंगे आप सभी लोग, लेकिन वही ना कि थोड़ा सा कैजुअल तरीके से कि बस गए घूमे फिरे, कहीं बाहर खाया पिया वापस आ गए, वैसी वाली पिकनिक नहीं। वैसी वाली पिकनिक पे जाना है हमें, जहाँ पर कि हमारे पेरेंट्स हमें लेकर के जाते थे, जिस तरह से वो लेकर के हमें जाते थे उसी तरह से आपको भी अपने बच्चों को लेकर के जाना है। ज़बरदस्ती कोई नहीं है, हो सके तो कीजिए, देखिएगा खुशी बहुत मिलेगी।

0: तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो फिर पिकनिक स्थल पर पहुँच करके पेड़ों की छाँव में बैठ करके चटाई पर खाना खाना, और ज़मीन पर गिरते ही तुरंत उठा ली गई वो पूड़ी, और शाम को थक हार करके वापस आ जाना, वो ही होती थी हमारी असली पिकनिक। बच्चों का वो आसपास में खेलना और हमारा अपने बाजू को तकिया बना करके सर रख के सो जाना, थोड़ा सा आराम करना, कितने अच्छे होते थे ना वो दिन। लेकिन श्रोताओं, अब सोचिए कि आज हम वीकेंड पे कहाँ जाते हैं। बार बार वही तो कह रही हूँ ना कि मॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में, या फिर किसी बंद एयर कंडीशन कैफ़े में, और वहाँ पर क्या करते हैं, बैठ करके रील्स स्क्रॉल करते चले जाते हैं, और पास बैठे इंसान से हम बात भी नहीं करते हैं, मुंह ही नहीं खोलते, अपना सिर ही हमें ऐसे करके नीचे करके हम बैठे रहते हैं अपना, तो सामने वाले को क्या देखेंगे कि वो हमारी तरफ देख रहा है, कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है, क्या सोच रहा है, या फिर वो भी अपने मोबाइल में खोया पड़ा है। हमने ना प्रकृति की खुली हवा को छोड़ करके खुद को कंक्रीट के डिब्बों में बंद कर लिया है। तो फिर हम शिकायत ये करते हैं कि हमारी हेल्थ ख़राब हो गई, और हमें ये बीमारी हो गई, हमें वो बीमारी हो गई। प्रकृति के साथ रहना सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। और बहुत समय से तो हम प्रकृति की बात कर ही रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, अर्थ डे आया तो हम प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, अभी एनवायरनमेंट डे था तो हमने प्रकृति की बात की, आगे आने वाला दिवस भी आने वाला है, अभी वन्य जीव दिवस भी होता है, तब भी हम प्रकृति की ही तो बात करते हैं ना। हम कहाँ रहते हैं, इसी प्रकृति में, इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो फिर हम इससे दूर क्यों होते चले जा रहे हैं, हम क्यों मोबाइलों में खोते चले जा रहे हैं। चलिए, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, एक ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि हमारी हेल्थ से ऊपर हो जाए। अब कई कई लोग कहते हैं कि हम वीडियोस एडिटिंग के चक्कर में रात रात भर सोते नहीं हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और कुछ समय के बाद अगर वही लोग आपको ये कहते हुए सुनाई दें कि हमारी तो आंखें ख़राब हो गई, हमारे को ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें हमारा जो सर है वो बहुत दुखता है, तो आप क्या कहेंगे। अगर माँ बाप हों तो वो तो ये कह दें कि और देखो मोबाइल, और देखा करो रात रात को बैठ करके, कहते हैं ना माता पिता तो कहते ही हैं, लेकिन फिर वही बात कि ये हमारी हेल्थ से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकती हैं चीज़ें, ये गैजेट्स हैं, इनको गैजेट्स की तरह इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर आप इन्हें किसी वर्क के लिए, काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो माना जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका एक शेड्यूलिंग कर लीजिए, कोई शेड्यूल बना लीजिए। खैर, ये बात ना पिकनिक से कहाँ पहुँच गई है वहाँ पहुँचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पिकनिक में हमारा अपना ही मज़ा चल रहा था, और जब हम उस तरफ चले जाते हैं ना तो फिर आप भी सोचेंगे कि ओहो मम्मी पापा तो टोकते रहते हैं, और ये भी यहाँ से शुरू हो गई हैं अब टोकने के लिए। खैर, बात तो सही ही है ना, थोड़ा सा सोचिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब ओहो, समाचारों का वक्त हो गया है, आइए सुन लेते हैं समाचार। काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड अवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। एंड इट विल ओपन अप मेनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ प्रणाल सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपरी, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के बीच गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा माल वाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, हमराही फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

हमराही फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। रेडियो गुंजन धर्मशाला से मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। 18 जून के इस शाम में बात हो रही है पिकनिक की। हालांकि शाम को तो पिकनिक नहीं जाया जा सकता है, लेकिन फिर प्लान जरूर बनाइएगा आप। चलिए कुछ जानकारियां शुरू करें। जानकारियों के अंतर्गत केबी बरवाला फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में फतेहपुर, सिद्धपुर, तपोवन, बागणी, झियोल, बरवाला, आधुनिक स्कूल छैंडी तथा बरेह में 20 जून को सुबह 9 से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, यानी कि परसों। मौसम खराब होने या फिर अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या फिर आंशिक रूप से किया जा सकता है। और इसके साथ ही 33/11 केबी सबस्टेशन शाहपुर और 33/11 केबी सबस्टेशन दरीणी के अंतर्गत आने वाली क्षेत्रों रैत, प्रेई, बागड़ू, बसनूर, शाहपुर, मझी

यार झंगी डोहब क्यारी सद्दा सद्दू हरनेरा बडंज उनताली मील ITI द्रमण छतड़ी सिहुंदा भनियार रेलू पलवाला दरगेला बोरू सारना मनोह गोरड़ा भनाला दरीणी बोह सल्ली डुल्ली मछलानी खरीड़ी तल लाहड़ी लड़ बटूनी कुठारना निहारकी डुल्ली भलेड़ काकरा रुल्हेड़ मोरच स्पेडा लाम रिड़कमार और सात लगते क्षेत्रों में 19 जून को यानी कि कल सुबह 9 से 5 शाम 5 बजे तक या फिर कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

श्रोताओं, जब भी हम कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो हम आश्चर्यचकित भी होते हैं कई बार, और हमारे मन में ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर जगहों को आखिरकार बनाता कौन है।

बूंद जो बन गई मोती, फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। ये नन्हे मुन्ने साथी थे जिनकी थी आवाज़ें। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और श्रोताओं, अब जानकारियों का सेक्शन हमने पकड़ा हुआ है तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दाड़ी मैदान में उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने और नशे के विरुद्ध जन आंदोलन को सशक्त बनाने का सामूहिक संकल्प भी दिलवाया। धर्मशाला के दाड़ी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र की सबसे सशक्त इकाई हैं और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में उनकी केंद्रीय भूमिका है। पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तथा गांवों के विकास, सामाजिक समरसता और जन कल्याण के साथ साथ सड़कों, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित करना उनका दायित्व है।

और इसी के साथ एक जानकारी और भी है कि आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में निर्मित होने वाले 50 बिस्तरों की क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करके समग्र और एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस नए अस्पताल के निर्माण के से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी तथा लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से युक्त एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के चरान में स्मार्ट सिटी लिमिटेड DSCL द्वारा 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण भी किया।

और इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत। चलिए पंजाबी गीत सुनवाएं। आवाज सरदुल सिकंदर की।

तो श्रोताओं, सरदूल सिकंदर की आवाज़ में आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा पंजाबी गीत 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। जानकारियां भी हमने आपको दे दी हैं, आज की महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे आसपास घटी हैं धर्मशाला में चीज़ें, और साथ में जहां जहां पर कल बिजली बंद है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं फिर से हमारे प्यारे से दिवस जो हम आज मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पिकनिक डे की। तो पिकनिक पर हम आपको ले भी गए, हमने वहाँ पर आपको खाना भी खिला दिया, मतलब बनाया तो आप ही लोगों ने था, खुद ही अपने ही घर से बना करके ले गए थे आप, और वहाँ पर बच्चों ने खेल भी खेल लिए, आपने रेस्ट भी कर ली। अब बस वहाँ से चलने का समय है, चटाई उठाते हैं और वापस घर को चलते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल ना हमारी लाइफ में माइक्रो स्ट्रेस आ गया है। माइक्रो स्ट्रेस साइलेंट किलर है, इसको कहा जा रहा है। बड़े तनाव में हमारा दिमाग सचेत हो जाता है, हम उससे लड़ते हैं, पर माइक्रो स्ट्रेस इतना छोटा होता है कि दिमाग उसे खतरा ही नहीं मानता, सहता चला जाता है उसको, और इससे गंभीर एंग्जाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। माइक्रो स्ट्रेस दिमाग के अंदर कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ाता है, उससे सिर दर्द, ध्यान केंद्रित करने में समस्या और मूड स्विंग्स की परेशानी होने लगती है। तो जब हमारी जिंदगी में ये सब कुछ शुरू हो जाता है ना, तो फिर हमें जाना चाहिए कहाँ, पिकनिक पे। थोड़ा सा हमें अपना रूटीन जो है वो चेंज कर लेना चाहिए कि भाई हम रोज़मर्रा की जो रूटीन है ना उसको छोड़ करके कुछ बदलाव करते हैं अपनी लाइफ में, और चलो बोरा बिस्तर बांधते हैं और चलते हैं हम पिकनिक के लिए। अब देखिए, मैं कह रही थी ना कि मम्मी की हेल्प हो जाती है, वो पता कैसे होती है, जब बच्चों को पता लगता है ना कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं और पिकनिक के बारे में आप थोड़ा थोड़ा उनको गाइड करते चले जाते हैं, आप बताते हैं कि हम लोग जाते थे पिकनिक पर और ऐसे ऐसे हम सेलिब्रेट करते थे जा कर के, तो बच्चे भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुशी खुशी मम्मी का हाथ बटाते हैं हर काम में कि ठीक है जी हम ये भी कर देंगे। अब उनको ये भी कहा जा सकता है कि आप डिब्बे ढूंढ के लाइए, कौन से डिब्बों में हम खाना पैक करें और क्या क्या हमें लेके जाना है, वो सारी तैयारी आप बच्चों से करवा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को किन्हीं दूसरे कामों में एंगेज किया जा सकता है और इससे बच्चे खुश भी होंगे और फिर नेक्स्ट टाइम पिकनिक जाने के लिए सोचेंगे कि भाई कब चलेंगे, कब चलेंगे, जान छोड़ेंगे नहीं, वो आपकी पीछा करते ही रहेंगे। एक बार उन्हें लेकर के तो जाइए, फिर देखिए आपके घर का माहौल कैसा चेंज होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो हम तो अभी बहुत कुछ सालों पहले तक भी पिकनिक जाते रहे, और एक बार की तो मुझे बात याद है कि मैं आपको बताती हूँ, आप भी हंसेंगे, मुझे तो जब भी याद करती हूँ मुझे हंसी आती ही है, कि हम ना पिकनिक मनाने के लिए चले जाया करते थे, मम्मी पापा घर में रहते थे और एक बार मम्मी ने कहा कि भाई हम भी जाएंगे, क्योंकि वो देखती थी कि खाना वगैरह सारा बना करके लेके जाते हैं और फिर वो वहाँ पर जाकर के पता नहीं क्या क्या मस्ती करते होंगे, मतलब ये लोग, तो हम भी जाएंगे साथ में, तो मतलब मेरी सासू माता जी ने, तो वो कहने लगी कि हम भी चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है आप भी चलो, आपको आपको तो हम कहते ही रहते हैं आप चलो, लेकिन आप अपनी काम की व्यस्तताओं के कारण खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं आप जाओ, बच्चे बच्चे हमने क्या करना है बीच में। तो जब उनको लेकर के गए और यहीं गोपालपुर के जो जहाँ पर बैठते हैं लोग वहाँ उन गोपालपुर की वादियों में, तो जब हमने खूब घूम फिर करके उन्हें सब जगह दिखा विखा करके हमने सोचा चलो खाना खाते हैं, अब सारा कुछ हम लोग साथ में लेकर के गए थे, और जैसे ही हमने अपना खाने का बॉक्स खोला, कैसरोल खोला, तो हुआ क्या पता है कि हमसे पहले वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बहुत सारे जीव बैठे हुए थे।
बताती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। वो होते हैं ना छोटे छोटे से काले

0: काले से मकोड़े। और जैसे ही हमने खाना खोला और उनको खुशबू आई, अब होता है बच्चे होते हैं, बच्चों को हमने खाना परोसा तो साथ में वो कहीं इधर उधर गिरा भी देते हैं। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा और मकोड़ों ने कर दिया वहाँ पे अटैक, उन्होंने कहा तुम तो भैया अपनी पिकनिक बाद में मनाना, पहले तो हमें दे दो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इसी ताक में बैठे हैं कि कोई आए और हम उस पर झपट्टा मारे। खैर वो भी हुआ, हमने उन्हें भी जगह जगह पर डाल दिया कि चलो अब तो ये हमारा पीछा छोड़ेंगे, लेकिन नहीं। फिर हम वहाँ से उठ कर के किसी दूसरी जगह चले गए, हमने कहा चलो यहाँ पर चलते हैं, शायद वहाँ पर वो नहीं होंगे। लेकिन हम जहाँ भी जाएँ वो चींटे मकोड़े सब जगह। और हार करके, थक हार करके हमने फिर एक वाटर बॉडी पकड़ी और हम फिर उसके आसपास में कहीं बैठ गए। वहाँ पर थोड़ी इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। वहाँ पर बैठ करके हमने शांति से अपना खाना खाया और उसके बाद झटपट से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, क्योंकि खाने की स्मेल से वो कहीं ना कहीं से तो चले आ ही रहे थे। और मेरी माताजी ने कहा कि भाई अब ये पिकनिक तो तुमको ही मुबारक, आगे से तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। तो वो वाली पिकनिक, देखो मैंने कहा था ना कि कई चीज़ें, कई बातें जो होती हैं ना वो याद रह जाती हैं। पिकनिक पर हम लोग एक बार नहीं, बहुत बार गए हैं, बहुत बार। लेकिन कुछ कुछ विशेष दिन होते हैं, विशेष पिकनिकें होती हैं जो याद रह जाती हैं। तो ऐसे ही वो वाली पिकनिक हमारे लिए यादगार हो गई थी। आपके पास भी कोई ऐसे यादगार क्षण हो तो आज बैठ करके अपने बच्चों के साथ रात को याद कीजिएगा और प्लानिंग कर लीजिएगा कि अगली बार आपको पिकनिक कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या सामान लेकर के जाना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम पूरी तैयारी कर लेते हैं ना, कोई एक आधी चीज़ घर में छूट जाती है ना, जैसे मान लीजिए नमक छूट गया या फिर सैलड में कोई चीज़ छूट गई, चाकू छूट गया जिससे हमने सैलड को काटना है, मज़ा तभी आता है। क्योंकि असली चैलेंजेस तभी शुरू होते हैं, तब पता लगता है कि इनके बिना भी तो काम होता है। और वाकई में सब काम हर चीज़ के बिना हो जाते हैं। चलिए, बहुत देर से मैंने रखा था ये गीत आपको सुनवाने के लिए, तो अब आ गई है इसकी बारी। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अदालत फिल्म का ये गीत है और इसमें बनाई जा रही है पिकनिक।
1: दिल हो जवान
2: क्यों ना मनाए पिकनिक।

जब दिन हसीन दिल हो जवां क्यों ना मनाए पिकनिक। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, साथियों की आवाज़ों में आपने सुना अदालत फिल्म का ये गीत। तो कितना प्यारा सा गीत था ना, और मन में जग गई है इच्छा पिकनिक जाने की। जी ज़रूर जाइए, आसपास के लोगों को लेकर भी जाइए, और कहीं रिश्तेदार हैं आसपास में तो उनको भी कह दीजिए पिकनिक मनाने चलने के लिए साथ में। अगर वो रूठे हुए होंगे तो मन भी जाएंगे और बच्चों को भी साथ में लेके जाइए, और अगर कहीं आसपास में छोटे छोटे और बच्चे भी हैं जो जाना चाहे। वैसे आजकल कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, लेकिन ले जाएंगे साथ में उन्हें, तो मतलब आपके बच्चों के दोस्त भी होंगे ना, अगर उन्हें भी लेकर चले जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो थोड़ी सी सेफ होनी चाहिए जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। और भाई सच बताऊं तो आपको बोलने के साथ साथ में अब मेरे भी अरमान जाग गए हैं। मैं भी सोच रही हूं कौन सी जगह पर जाया जाए पिकनिक मनाने के लिए। वैसे तो हमारा जो हिमाचल है ना, वो पूरा ही बहुत सुंदर है, कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन पिकनिक बड़ी दूर भी जा कर के नहीं मनानी है। क्या आप चले गए हैं कहीं 2-3 रातों के लिए और वहाँ पर आप बोल रहे हैं जी हम पिकनिक मनाने के लिए चले गए? ऐसा नहीं होता है। आस पड़ोस में ही जाइए, कहीं पर, कहीं खुला मैदान है, थोड़े हरे भरे पेड़ हैं वहाँ पर लगे हुए, वहाँ चले जाइए। और कितनी जगह गिनाऊं, मैंने कहा आपको कि हिमाचल ही हमारा पूरा प्यारा है। तो आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ। जनसेवा की भावना से काम करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित। कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टैट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे।
1: प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना, ये जो कल एक बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे विज्ञान भवन में, और उस इवेंट में इसका जो बेनिफिट्स है इम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को डिसबर्स होगा। लगभग 2400 करोड़ का बेनिफिट जो है डिसबर्स होने वाला है कल के कार्यक्रम के थ्रू, जहां हमारे रीजनल ऑफिस है या इंडस्ट्रियल क्लस्टर में पूरे इंडिया में 200 जगह के कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। तो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है। यहाँ पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे हर्षवर्धन जी है, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्कीम है और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को एनहांस करें।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जन प्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
2: निर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अपने 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2026 से 2031 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहाँ एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने और नशे के विरुद्ध जन आंदोलन को सशक्त बनाने का लोगों को सामूहिक संकल्प भी दिलाया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों की क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने धर्मशाला के चरान में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होने के बावजूद सरकार ने यहां विकास कार्यों की गति को प्रभावित नहीं होने दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 25 वर्षों से लंबित कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना को सरकार ने गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है।
3: देश के कांगड़ा जिला को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं लाई है। कुछ योजनाएं लागू होगी और भविष्य में और योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। एयरपोर्ट जो आपका 25 सालों से जिसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा रही थी और तकरीबन 2500 करोड़ रुपया हमने परिवार विस्थापित हुए है उपलब्ध करवाया, अब एयरपोर्ट का निर्माण होगा। दूसरा था कि हेलीपोर्ट बनाया जाए। तीसरा, ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कन्वेंशन सेंटर तपोवन में हम बनाने जा रहे हैं। और आप देखते होंगे कि टूरिस्ट जो पहले बहुत कम आता था, बहुत ज्यादा आने लगा है।
0: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिला के टापरी स्थित फल मंडी का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिससे छोटे व सीमांत बागवानों को लाभ मिलेगा। वे कल शाम किन्नौर जिला के टापरी में आयोजित 6 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2027 से इस मेले को धूमधाम से मनाया जा रहा है और किन्नौरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये एक उपयुक्त मंच साबित हो रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक

0: समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वे आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में देश की शैक्षणिक संरचना में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है और आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 और आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को केवल संख्या बढ़ाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने केंद्र सरकार से 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के फैसले के बाद लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय टेट टेस्ट की बाध्यता के बाद नौकरी जाने का संकट सही नहीं है। विनोद कुमार सूद ने कहा कि प्रदेश में 10,000 से अधिक अध्यापकों की नौकरी खतरे में है और 2010 से पहले हुई नियुक्तियां उस समय के नियमों और योग्यता मानदंडों के अनुसार हुई है। बाद में तय पात्रता शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्याय संगत नहीं है।
1: जितने भी योग्यता के मानदंड या कोई भी नोटिफिकेशन निकली है वो आगे के लिए इम्प्लीमेंट हो, 2010 से आगे के लिए तो ये सभी टीचर्स ने जितने भी नियुक्त हुए बात की है, लेकिन उससे पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। आज तक जितनी भी नीतियां बनी है, जितनी भी रेगुलेशन संशोधन हुए हैं या नोटिफिकेशन हुए वो आगे के लिए। हमारा तर्क यही है कि 2010 से पहले तो पूरी उन्होंने अपनी योग्यता पूरी की, 2010 से पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, अब एकदम से दी है वो जो इतने बच्चों से पढ़ा रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके माध्यम से गुणवत्ता नहीं जा रही। माननीय केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं डीसी के माध्यम से।
0: भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई को पूरी हो चुकी है और काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
2: आज भाजपा के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं वो वंशी में आए थे, एक रोष जो हमने प्रकट किया सुखू सरकार के प्रति कि इतने दिन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 31 तारीख का हमारे काउंसलर चुन के आए हैं और आधे महीने से भी ज्यादा समय हो गया और अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है और बिना शपथ के बिना स्टैंप साइन के वो बोलने के काउंसलर है, तो बड़ी शर्म की बात है सुखू सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए और तमाम जनता दुखी है।
0: इस बीच भाजपा जिला शिमला की मासिक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन व जिला प्रभारी सुरेश चंदेल उपस्थित रहे। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों व केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे जनसंपर्क अभियानों की समीक्षा की गई। सुरेश चंदेल ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। बैठक के बाद बालूगंज क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया गया जहां लोगों को केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक वितरित किए गए। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी दैवीय परंपराओं का आज भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जिला के हरिपुर क्षेत्र के गहल गांव में 18 वर्षों बाद आज माता बिजाई का छाई पाल की जागरण आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक गांव बडोल से ये पाल की जागरण पैदल यात्रा आज गहल गांव के लिए रवाना हुई जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। गहल पंचायत के प्रधान ओपी ठाकुर ने कहा कि माता बिजाई में लोगों की गहरी आस्था है और इस आयोजन से धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
3: 18 वर्षों के बहुत लंबे के अंतराल के बाद गांव है गहल और जागरण हो रहा है छाईपाल की जागरण। और जो बड़ोल है जहां पर देवी माता का मंदिर है विजयी माता का, ये हमारी कुल देवी है और जो धार्मिक आयोजन में है आज हजारों की संख्या में गहल में श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता की जो पालकी है उसको गहल गाँव के लोग ने कंधों पर उठाकर पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा करके हम गहल के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और जो हमारी ये जो दैवीय संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के अंदर, इसमें माता के ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम है। ये जो धार्मिक आयोजन है अपने आप में बहुत बड़ा आज पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है।
0: लाहौल स्पीति जिला के ग्रामफू कोकसर मार्ग पर धारा वाटरफॉल के पास आज एक वाहन के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गई जबकि 1 घायल हुआ है। हमारे जिला संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों में हरियाणा के गुरुग्राम की 26 वर्षीय तनु कुमारी और उनका 11 माह का बेटा शामिल है। इस घटना में बिहार के वैशाली की घायल 52 वर्षीय सविता देवी का सिविल अस्पताल मनाली में उपचार चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ, जन सेवा की भावना से कार्य करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित, कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं
4: 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। अब ज्योति पठानिया को दे दीजिए इस कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले कार्यक्रम में जरूर पूछूंगी आप लोगों से कि कहाँ गए थे आप लोग पिकनिक मनाने के लिए। तो चलिए, ओके, बाय।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है,

0: ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां, तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका देगा साथ, ट्रंप का कहना ईरान से डील कल संभव, शर्तें न मानी तो फिर बरसाएंगे बम, मांगे नहीं मानी तो 25 जून से थम सकते हैं बसों के पहिए। वन विभाग पहली बार अपनी नर्सरी में तैयार करेगा कचनार के पौधे। अब समाचार विस्तार से।

11 केवी बरवाला फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों फतेहपुर, सिद्धपुर, तपोवन, बागनी, झियोल, बरवाला, आधुनिक स्कूल छैंटी तथा बरेह में 20 जून को सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। सामान्य रखरखाव कार्य के कारण 33/11 केवी सबस्टेशन शाहपुर और 33/11 केवी सबस्टेशन दरीनी के तहत आने वाले क्षेत्रों रैत, प्रेई, भागड़ू, बसनूर, शाहपुर, मछियार, झंगी, डोहव, क्यारी और इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में 19 जून को सुबह 9 बजे से साढ़े 5 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा के प्रावधान होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच डील शुक्रवार को हो सकती है। G7 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात के दौरान उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ

हुआ है और अभी कई बातें तय होना बाकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो अमरीका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हम फिर बम बरसाएंगे। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन का कहना है कि आंदोलन 24 जून तक जो है वो जारी रहेगा। चेतावनी दी गई है कि यदि 24 जून तक कोई समाधान नहीं निकला तो 24 जून को रात 12 बजे के बाद प्रदेश भर में एचआरटीसी चालक परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे 25 जून से प्रदेश भर में एचआरटीसी बसों के पहिए थम सकते हैं। वन विभाग अपनी नर्सरी में कचनार के पौधे तैयार करेगा। कचनार अपनी पारिस्थितिक, औषधीय और जैव विविधता संबंधी महत्ता के लिए जाना जाता है। ये पौधा प्रदेश के हर जिला में होता है। अभी तक प्राकृतिक रूप से ही जंगलों में उगता है। इसके औषधीय गुणों को देखते हुए विभाग इसकी नर्सरी तैयार करेगा और लोगों को पौधे लगाने के लिए भी दिए जाएंगे। कचनार की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है और उसे सब्जी के लिए उपयोग किया जाता है। पेपर लीक विवाद के बाद नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में किसी तरह कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ केंद्र व राज्य सरकारों ने पूरी सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। हालांकि परीक्षा में अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन इसके बावजूद एनटीए ने अपने पूरा तैयारी कर ली है, जो न सिर्फ परीक्षा से जुड़ी किसी तरह की झूठी जानकारी पर पैनी नजर रख रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों की धरपकड़ में भी जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। 1-8 जिलों में छोटे अध्ययन में प्रदेश के संधारियों में इस बीमारी का व्यापक संक्रमण पाया गया है। शोधकर्ताओं ने 96 नमूनों में से 38.5% में स्क्रब टाइफस पैदा करने वाले जीवाणु का डीएनए पाया है। एक्सक्लूसिव चौंकाने वाली बात ये है कि राज्य में 15 नई जिगरमाइट प्रजातियां भी पहली बार मिली हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन 15 में से एक प्रजाति है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टॉस नदी पर प्रस्तावित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को अब नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। करीब 86 वर्ष पुरानी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। परियोजना से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला जिलों के 2092 लोग प्रभावित होंगे। जानकारी के अनुसार प्रभावित 8 गाँव में से 6 गाँव सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल और 2 गाँव शिमला जिले में स्थित है। परियोजना के वर्तमान स्वरूप के अनुसार टॉस नदी पर 236 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट होगी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में मकानों की गणना 15 जुलाई तक पूरी की जानी है। इस प्रक्रिया को सुचारू और सटीक बनाने के लिए जनगणना अधिकारियों को राजस्व विभाग के कानूनों और पटवारियों की मदद लेने की अनुमति दी गई है। जनगणना कार्य के दौरान यदि किसी क्षेत्र की सीमा, राजस्व रिकॉर्ड या गांव की भौगोलिक स्थिति को लेकर कोई संशय उत्पन्न होता है तो संबंधित कानूनों और पटवारी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध क्षेत्र की सीमा पर संशय होने पर कानूनों पटवारी जानकारी कराएंगे उपलब्ध। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पहले भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच के बाद अब घरेलू क्रिकेट का खुमार चढ़ेगा। यहां सीनियर अंतर जिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की अहम मुकाबले खेले जाएंगे। यहां प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले 24 जून को जबकि फाइनल मुकाबला 25 जून को खेला जाएगा। सीनियर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है। लीग चरण के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। फूल ए से शिमला और मंडी की टीमों ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। भारत के रणनीतिक भंडार देश के कुल क्रूड जरूरत का सिर्फ 9 से 10 दिनों तक ही सहारा दे सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक मंच काउंसिल ऑन एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार तेल आयात और

प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। जनजातीय विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जनसंख्या में यौन संचारित रोगों की व्यापकता, जोखिम कारकों एवं उपचार खोज व्यवहार विशेष शोध अध्ययन की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास ओंकार चंद शर्मा ने जारी किया। जिला चंबा, किन्नौर एवं लाहौल स्पीति के 3000 प्रतिभागियों पर आधारित इस अध्ययन में जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोगों से संबंधित लक्षणों, जागरूकता, जोखिम कारकों एवं उपचार प्राप्त करने के व्यवहार का आकलन किया गया है। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कुछ खा...

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।